FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 34 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती से हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

ईश्वर हर किसी की सुनते हैं, बस भरोसा और सब्र कभी कम नहीं होना चाहिए।

चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राजतिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्या वासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदर पूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस, प्रस्तुति थी सुरेश वाडकर की, निर्माण किया था सतीश भाटिया ने। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी है। आकाशवाणी से अब सुनिए ये संदेश।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: ये आकाशवाणी है,
4: हर पल आपके साथ।
3: समाचार हो या सदाबहार गीत,
4: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
3: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
4: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
3: आकाशवाणी।

आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से अब सुनिए आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

गीता संदेश आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर। आज आप सुनेंगे अध्याय 3 के श्लोक 1-3 की व्याख्या। प्रस्तुति होगी डॉक्टर चित्रंजन दयाल सिंह कौशल की।

युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। सजे फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय रहेगा सुबह 10:00। सुबह 7:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम बाजे नगाड़ा। आज के कलाकार होंगे मेहर सिंह। सुबह 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे और कार्यक्रम स्वरांजलि नॉन फिल्मी गीतों पर आधारित आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर।

कार्यक्रम गाने नए पुराने आप सुन सकेंगे शाम 5:05 पर। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। ग्राम संसार कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे और शाम 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी बात। रात्रि 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। प्रस्तुति होगी विनय श्री की। अंत में रात्रि 10 बजे सुनिएगा व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। ये थी आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश का एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, सुबह 7 बजे सुनिएगा हिंदी समाचार, सुबह 7:05 पर होंगे अंग्रेजी समाचार। इन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पंच देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्री मोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं संप्राप्स्यति। 17,2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमंत्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक वार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामि यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असम राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असम राज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 30 पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास हो
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहनें
2: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
2: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
2: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मल लैग किसे कहते हैं,
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
2: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
3: आग बरसाती धूप।
4: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
5: क्यों?
4: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
5: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
4: हाँ।
5: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
5: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से,
4: चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा। और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो। देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, इस लोटे में ठंडा पानी है। तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
5: ठंडक में खेले

0: आग बरसाती धूप।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
2: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
4: साथियों नमस्कार।
3: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
4: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
3: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
4: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
3: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
4: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
3: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
4: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
3: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
4: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनकी नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन

0: इस समर नायक को हमारा
1: सलाम, सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिल्यांग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाजय नगाड़ा। आज के कलाकार हैं मेहर सिंह। गीत से पहले सुनिए ये संदेश।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
0: आप सुन रहे हैं हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बाजय नगाड़ा। आज के कलाकार हैं मेहर सिंह।

एक बात चाक सिंह के किस्से की, जिस समय शेर खां पठान तारा नाम की दुत्ती के पास गया, उसको आवाज लगाने लगा, क्या बताया भला?

अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोक गीतों का कार्यक्रम बाजय नगाड़ा। आज के कलाकार थे मेहर सिंह। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और सुबह 8:15 पर सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। इन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है।

0: एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
8: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
9: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
10: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गयी है। एक रिपोर्ट।
11: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
10: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ED arrests former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
13: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी

नई सुबह की ताजगी, हल्की सी धूप और ढेर सारी उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। मैं हूं आपके साथ केशना। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

साथियों, आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा

6021336 पर समय रहेगा 8:45 तक। साथियों केवल तीन नाम ही भेजिएगा और अपने नाम, सही जवाब और शहर के नाम के बीच में एक पर्याप्त जो गैप है वो ज़रूर दीजिएगा।

श्रोताओं, पौधे केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे जीवन का आधार भी हैं। वे हमें ऑक्सीजन, भोजन, औषधियाँ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। इसलिए पौधों का स्वस्थ रहना केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए भी

0: अत्यंत आवश्यक है। इसी महत्व को समझाने के लिए 12 मई को यानी आज के दिन को पौधों के स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौधों का स्वास्थ्य सीधे हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा होता है। यदि पौधे रोगग्रस्त हो जाएं, तो फसलों की उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह दिवस लोगों को पौधों की देखभाल के प्रति जागरूक करता है। पौधों को समय समय पर पानी और पोषण देना जरूरी है। जैविक खाद का उपयोग पौधों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। कीट और रोगों से बचाव के लिए प्राकृतिक उपाय अपनाने चाहिए। अधिक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। स्वस्थ पौधे वायु को शुद्ध करने में मदद करते हैं। पेड़ पौधे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। बागवानी और वृक्षारोपण से मानसिक शांति भी मिलती है। स्कूलों और समुदायों में इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पौधों की नियमित छटाई उनके विकास के लिए लाभदायक होती है। मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना आवश्यक है। घरों में छोटे छोटे पौधे लगाने से वातावरण स्वच्छ रहता है। पौधों की सही जगह और रोशनी का चयन महत्वपूर्ण है। वर्षा जल का उपयोग पौधों के लिए लाभकारी होता है। इस दिन पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया जाता है। बच्चों को पौधों के महत्व के बारे में सिखाना भी जरूरी है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। पौधों का स्वास्थ्य मानव जीवन की सेहत से जुड़ा होता है। पौधों के स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि यदि हम पौधों का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति और हमारा भविष्य दोनों सुरक्षित रहेंगे।
1: चकरका चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरका टम अको टको इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचका चो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकरका हुकबुकुरे टुकबुकुरे चकलका बिको चिको सिलिसिलिसिलिगो बगड़दुम जगड़दुम चिकिचका चो।

साथियों, किसी भी समाज की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक महिलाओं को समान अवसर और भागीदारी न मिले। लंबे समय तक महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी सीमित रही है। इसी असमानता को दूर करने और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त बनाने के लिए महिला आरक्षण की अवधारणा सामने आई। महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति और अन्य क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व देना है। भारत में पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पहले से लागू है। कई राज्यों में यह आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। हाल ही में संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर कानून पारित किया गया। महिला आरक्षण से निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है। इससे समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। आरक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी नेतृत्व का अवसर मिलता है। कई सफल महिला नेता इसी आरक्षण व्यवस्था से उभरी हैं। यह सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाता है। महिला आरक्षण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बेहतर ध्यान दिलाता है। इससे बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है। कुछ लोग इसे योग्यता के आधार पर चयन के विरुद्ध मानते हैं, लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि समान अवसर के बिना योग्यता साबित करना कठिन है। आरक्षण असमानता को कम करने का एक माध्यम है। यह महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। महिला सशक्तिकरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है। समाज में संतुलित विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न किया था कि किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा यूपीएससी परीक्षाओं के उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना शुरू की है। इसका सही उत्तर है मेघालय। जिन श्रोताओं ने आज के प्रश्न का सही उत्तर दिया है उनके नाम हम बताएंगे इस विज्ञापन के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में

0: ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जिन श्रोताओं ने आज के प्रश्न का सही उत्तर दिया है उनके नाम है सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू और बीमा साहू, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा और अंजनी ज्योति वर्मा, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे और विनय शंकर पांडे, वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा नाई वाला राजस्थान से, अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान, नरेश मल्होत्रा, नीतू, भावना मल्होत्रा और अनिल कटारिया, खैल बाजार पानीपत से, नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर और रीमा ठाकुर, विक्रम योग भारती, संध्या सैनी और हरमन योग भारती, फालसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से, पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी और बक्सर बिहार से राज SD अंसारी, दिल्ली बिहारी कॉलोनी शहादरा से तुलसी मस्कीन, बीर शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे और अंजलि करवा, MD अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल राही और रोशनी जनागल, हेमंत शिंदे और ऋषिकेश शिंदे सांगली से, लाडवा से चांद ढींगड़ा ईशु और एमी, नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, कविता साहू और प्रमोद कुमार साहू, ग्राम कदुआपड़ा जगत सिंह पुर ओडिशा से, डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और विश्व

दीप ये ले। बिहार से डब्लू उल्लाह बेलदार, वली उल्लाह बेलदार और सोनम उल्लाह बेलदार। छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। डोंडी लोहारा से प्रभा जाटव, राधिका जाटव और शनि चौक खंडवा से अनीता कुमारी और दुर्गा कुमारी। गांव भाणा ब्राह्मणावाला नरवाना से मेघराज शर्मा। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार काम्बोज वंश और भुवेश कुमार काम्बोज। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। गांव कलाना भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा और योगेश कड़वासरा। साथियों, नामों का सिलसिला जारी रहेगा, पर अभी सुनते हैं ये गीत।

साथियों, हम आपको बता रहे हैं उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने आज के प्रश्न का सही उत्तर दिया है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगाहत परवीन अब्बासी और शाहनवाज ऊपरकोट बुलंदशहर से, छत्तीसगढ़ बोरसरा से वैभवी साहू और विभूति साहू, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया विशाल सपकाल। उमेश सांगवान, गांव पैंतावास कला, जिला चरखी दादरी से। विमोद मूणत, नेहा जैन और दीपक, बोरखेड़ा पितरामल, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद और इरफा फान मोहम्मद। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला हुजरे और सबाहत हुजरे। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण भाई सोनी, अहमद भाई बागवान और लड्डू कुमारी। माघीराम सैनी और पूनम सैनी कुरुक्षेत्र से। लालपुर छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव और सोनल प्रसाद जाधव। एस एम जावेद, गुमला झारखंड से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय। आकली दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी। डुमराव बिहार से वली उल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गोरैया जालंधर से अशोक जाटव। कैलाशनगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता बंटी और शंटी लाडी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और कीसू। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा।

नेजा और निमित दिशानी, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी और शीलू सुहेल अब्बासी, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े, सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण भाई गुजराती, जगदीश भाई गुजराती और हिरेन भाई, रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट गुजरात से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार, सुनील पाठक, कमल पाठक और गाब्या मल्होत्रा अनारकली बाजार जगराव से, सरिता मौर्य, गौतम बी प्रकाश और कुश गौतम साईं विहार रामपुर से, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और यश मंसूरी, बलारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर और समीक्षा भारशंकर, और अंत में सही जवाब भेजने वाले श्रोता हैं टिया कृष्णा सोलन हिमाचल प्रदेश से। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको ये गीत।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: एक छोटा सा शहर था जहां विवान नाम का एक लड़का रहता था। विवान बहुत समझदार था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा पीछे खींचती थी। वह हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचता था। कोई भी छोटा फैसला हो, वह उसे इतना बड़ा बना देता कि खुद ही उलझ जाता। अगर ये गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं कर पाऊँगा या नहीं, ऐसे सवाल उसके दिमाग में लगातार चलते रहते। एक दिन उसे एक अच्छा मौका मिला। शहर में एक आर्ट प्रतियोगिता होने वाली थी। बचपन से ही उसे पेंटिंग का शौक भी था, लेकिन जैसे ही उसने हिस्सा लेने का सोचा, उसका दिमाग फिर दौड़ने लगा। अगर मैं हार गया तो, बाकी लोग मुझसे बेहतर हुए तो। वह कई दिनों तक बस सोचता ही रहा और ऐसे ऐसे करते करते आखिरी तारीख भी निकल गई। उस दिन उसे बहुत पछतावा हुआ। उसी शाम उसने अपने मोहल्ले के एक बुजुर्ग व्यक्ति शेखर दादा के पास जाकर उन्हें अपना चेहरा मुँह लटकाया हुआ दिखाया। उसे ऐसे लटके मुंह के साथ देखकर उन्होंने उसकी उदासी देखी और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? विवान ने सब कुछ बता दिया। शेखर दादा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि ये है कि तुम हर कदम उठाने से पहले ही उसके 100 नतीजे सोच लेते हो। विवान चुप रहा। दादाजी ने पास रखी एक बाल्टी में पानी भरा और उसमें एक छोटा सा पत्थर डाला। देखो, पानी में हलचल हुई, लेकिन कुछ ही पल में सब शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम हर पत्थर को पकड़कर बार बार हिलाते रहोगे तो पानी कभी शांत नहीं होगा। यही तुम्हारा दिमाग है, तुम हर बात को पकड़े रखते हो। विवान को बात समझ आने लगी। दादाजी ने आगे कहा, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना तुम्हें रोक देता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो सोचो, समझो और फिर कदम बढ़ाओ। गलतियाँ भी होंगी, लेकिन वही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। उस दिन के बाद विवान ने एक छोटा सा नियम बना लिया, जितना ज़रूरी है उतना सोचो और फिर एक्शन लो, यानी कि काम को शुरू कर दो। कुछ महीनों बाद फिर से वही आर्ट प्रतियोगिता हुई। इस बार भी डर था, लेकिन उसने खुद से कहा, डर रहेगा लेकिन मैं इसमें शामिल

होऊंगा, मैं इस कंपटीशन में भाग ज़रूर लूँगा। उसने हिस्सा लिया और भले ही वह पहला स्थान नहीं जीत पाया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इस बार उसने हार नहीं मानी थी। धीरे धीरे उसने अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लिया। वह अब हर बात पर नहीं उलझता था, बल्कि सही जगह पर अपना ध्यान लगाता था, और कुछ समय बाद वही विवान एक सफल कलाकार बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ओवरथिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर हम अपनी सोच को संतुलित रखकर सही दिशा में फोकस करें तो सफलता ज़रूर मिलती है। ज़्यादा चिंता मत करो, खुद पर ध्यान दो, कदम बढ़ाओ, मंजिल खुद रास्ता बना लेगी।

ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट होने की नहीं, बस शुरू करने की ज़रूरत होती है। छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनते हैं। ये था आज का विचार। साथियों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप इसके लिए हमें ईमेल कर सकते हैं आपकी बात akashvani@gmail.com पर। और चलते चलते कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं।

0: लुट पुट गया।
1: साथियों, संतीम गीत के साथ ही इजाजत दीजिए कार्यक्रम सुबह सवेरे को संपन्न करने की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि। गीत से पहले सुनिए ये संदेश।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: ये आकाशवाणी है,
5: हर पल आपके साथ।
4: समाचार हो या सदाबहार गीत,
5: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
4: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
5: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
4: आकाशवाणी।
0: पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मुस्तफा उज्जैनवाला और मानूनी देसाई की आवाज में।

अगला गीत आइए सुनते हैं साबरी ब्रदर्स की आवाज में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंत्र, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: साथ रखना।
1: जाओ कहीं भी सनम, तुझे इतनी पसंद, हमें याद रखना
0: तेरी दुनिया।
2: आज की फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री

0: वहीदा रहमान,
1: वो बीच में एक गैप था लिटरली। जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को गेशना का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमसे बात करने के लिए और अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए कॉल करें 221-322 पर। कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744। जब तक आप हमें कॉल मिलाते हैं, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो बहन जी, आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ?
1: बहन जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहन जी, आपका भी हम तहे दिल से बहुत स्वागत करते हैं जी।
0: जी, और मौसम कैसा है वहां पर?
1: बहन जी, पालमपुर का मौसम तो हमेशा ही खुशगवार ही होता है, और आजकल तो बिल्कुल भी गर्मी का कोई जहां नामो निशान नहीं है। कभी बरसात हो जाती है और बड़ा ही सुंदर सा नज़ारा भी देखने को जहां मिलता है। आसपास चाय के बागान हैं और ऊपर पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ जमी जब दिखाई देती है तो ऐसे लगता है जैसे चांदी बिखरी पड़ी हो।
0: अरे वाह, आपने क्या खूबसूरती से अपने आसपास के वातावरण को बताया है। चलिए, आप
1: बिल्कुल
0: प्रकृति
1: बहन
0: का
1: जी,
0: आनंद ले
1: बहुत ही
0: रहे
1: सुंदर
0: हैं।
1: नजारा है पासपोर्ट का।
0: जी, सुनने से ही लग रहा है कि कितना खूबसूरत नजारा होगा, और गर्मियों में ऐसा नजारा मिल जाए तो क्या बात है।
1: बिल्कुल बहन जी, कहने को तो शिमले को बढ़िया कहा जाता है, पर मैं तो ये कहूंगा कि शिमले से भी जहाँ का नजारा बहुत बढ़िया है, तभी तो जहाँ बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों के गीत वगैरह फिल्माने भी जहाँ ही आते हैं पालमपुर में।
0: जी, सब सब जगहें प्यारी हैं जहां आप रहने लग जाएं और उस जगह की खासियत और ज्यादा दिखने लगती है।
1: हाँ ये तो है।
0: जी, चलिए, आज गीत कौन से सुनेंगे आप?
1: बहन जी, आज मैं गीत सुनूंगा फिल्म हम राज का, महेंद्र कपूर जी की आवाज में। उसकी दो लाइनें मैं गुनगुना के बताना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गुनगुना दीजिए।

देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्ते,
0: कौन बात कर
1: कुलमेटर?
0: नमस्ते कुरुक्षेत्र, कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो
0: हेलो हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते कुलमेटर।
0: नमस्ते कुरुक्षेत्र, आप कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम बताएं।
1: महेंद्र क्या रेडियो श्रोता
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया जी। आज मुझे अनमोल गड़ी फिल्म का गाना सुनवा दो। सुरेंद्र अरनूर की आवाज है, आवाज दे कहा है, नौशाद साहब का संगीत है, दुनिया मेरी जवां है
0: जी। आपकी पसंद पर ये गीत सुनवा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: साथियों, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसे प्राण वायु देवता योजना कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य पुरानी और विरासत पेड़ों को बचाना तथा लोगों को उनकी देखभाल के लिए प्रेरित करना है। यह योजना पेड़ों को जीवित धरोहर मानकर उन्हें सम्मान देने की दिशा में एक खास कदम है। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसकी शुरुआत 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने पेड़ों का संरक्षण करना है। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेड़ों को इसमें शामिल किया जाता है। ऐसे पेड़ों को विरासत वृक्ष या जीवित धरोहर माना जाता है। पेड़ों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को पेंशन दी जाती है। यह पेंशन लगभग 2500 से 3000 प्रति वर्ष तक होती है। समय के साथ इसमें बढ़ावा भी किया गया है। पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह योजना वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर बनाई गई है। इसका उद्देश्य लोगों को पेड़ों की सुरक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। यह पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने में मदद करती है। योजना से लोगों का पेड़ों के प्रति लगाव बढ़ता है। हजारों पेड़ों को इस योजना के तहत चिन्हित किया जा चुका है। प्रत्येक जिले में वन विभाग द्वारा पेड़ों का चयन किया जाता है। पेड़ों की सही देखभाल सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। यह योजना जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी सहायक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यावरण जागरूकता बढ़ती है। यह भारत की पहली ऐसी योजना मानी जाती है जिसमें पेड़ों को पेंशन दी जाती है। योजना से पेड़ों की कटाई को रोकने में मदद मिलती है। यह पेड़ बचाओ अभियान को मजबूत करती है। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली सुरक्षित रहती है। प्राणवायु देवता योजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल है। यह हमें सिखाती है कि पेड़ केवल संसाधन नहीं बल्कि हमारे जीवनदाता हैं, जिनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।

0: हेलो हेलो, हेलो, हेलो।
1: हाँ, आदरणीय मैडम जी एवं सुनने वाले नमस्ते कुरुक्षेत्र श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
0: जी बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं।
1: धन्यवाद मैडम, मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ। मैडम जी कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं अशोक सिंह जी?
1: मैं भी ठीक हूँ, गर्मी का मजा ले रहे हैं। गर्मी पड़ने लगी जोरों से कल परसों।
0: अच्छा, ज्यादा गर्मी हो गई। बारिश हो जाने से थोड़ी सी तो राहत आई है मौसम में,
1: जी
0: पर फिर भी गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, लू भी शुरू हो जाएगी फिर से, तो
1: जी
0: उसमें अपना ध्यान रखें, पानी पिएं खूब, शिकंजवी,
1: अपना ध्यान रखते हैं, पशु
0: घरेलू,
1: पक्षियों को भी दाना पानी रखते हैं।
0: जी, पशु पक्षियों के लिए भी दाना पानी रखना बेहद जरूरी है गर्मी में।
1: जी
0: जी, और आपको कौन सा मौसम ज्यादा पसंद है, गर्मी का या सर्दी का?
1: मैं तो सभी मौसम वैसे तो है मैडम, अब गर्मी भी गर्मी लगती है, ठंडी में ठंडी, वैसे ठंडी थी।
0: अब मौसम में जब मौसम आता है तो इतना ज्यादा उसमें गर्मी में इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि अगर अच्छी भी लग रही हो तो नहीं लगेगी, और सर्दी में भी यही हाल है।
1: जी तो
0: जी,
1: हर तरह के मौसम का मजा लेना चाहिए, प्रकृति ने बनाया है मौसम का स्वागत करना।
0: जी, और जो ये प्रकृति में जो कुछ बुरे
1: मैडम भारत
0: बदलाव
1: की
0: भी आ रहे
1: नदी
0: हैं,
1: राज में
0: ये इसके इसके भागीदार हम भी हैं। हमारे हमारे ही कुछ ऐसे है ना,
1: जी,
0: हमारा ही
1: हमारे
0: योगदान है इसमें
1: हमारी
0: भी।
1: वजह से है जो इतनी गर्मी बढ़ रही। पेड़
0: जी जी
1: पौधे
0: जी
1: काटते हैं,
0: तो
1: उनको लगाना
0: प्रकृति
1: चाहिए हर मनुष्य
0: को
1: को,
0: बचाए
1: हर
0: रखना,
1: कर्तव्य।
0: और इस तरह से अपनी चीजों को करना कि प्रकृति को नुकसान ना हो, ताकि हमें भी नुकसान ना हो, क्योंकि अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो घूम फिर कर हमारे पास ही आ जाएगा।
1: जी संध्या मैडम, आपने जो कहा अच्छा है, इसका
0: जी, चलिए आज की,
1: सम्मान करना चाहिए। हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: फिल्माज मूवी का इतना चाहूं कि दे उदित
0: जी
1: नारायण अंतर।
0: जी चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी से, नमस्कार।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब

0: फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो हेलो
5: जी
4: जी नमस्ते, कौन बात
5: नमस्ते
4: कर रहे हैं?
5: मुरादाबाद यूपी से रणबीर सिंह।
4: बहुत बहुत स्वागत है रणबीर सिंह जी आपका
5: जी।
4: और मुरादाबाद का मौसम कैसा है, गर्मी कैसी है वहाँ?
5: मैडम इस वक्त मौसम बहुत सुहाना हो रहा है।
4: सुहाना हो रहा है मौसम, चलिए अच्छी बात।
5: पानी है, पानी पड़ रहा है, अभी सुबह पानी पड़ा है मैडम हमारे यूपी में।
4: अच्छा, बारिश हुई है
5: जी? बारिश हुई, आपके नहीं हुई हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में?
4: अभी तक तो नहीं हुई थी, अभी हम स्टूडियो में और बाहर का मौसम, बाहर जाके पता चलेगा।
5: तो आप स्टूडियो में बैठी है ना अंदर
4: जी?
5: हाँ।
4: देखिए सुबह तक तो कोई बारिश नहीं थी पर बीच में हुई है यहाँ बारिश।
5: अच्छा,
4: तो उसके बाद थोड़ी गर्मी हल्की तो कम हुई है, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा हो गई।
5: मौसम मैडम बहुत बढ़िया हो रहा।
4: चलिए अच्छा मौसम है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी भेज दीजिए अच्छा
5: जी,
4: मौसम
5: जी, जी। और... आपने गाना लगाया मैडम?
4: जी जी, आपकी पसंद का गीत हम अभी सुनवाएंगे। और
5: जी मैं...
4: जी जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप?
5: हाँ, मैं शेर गाना चाहता था मैडम।
4: बिल्कुल बिल्कुल कहिए जी, बोलिए
5: जी। कुछ जख्म ऐसे हुए फूलों पे सोया न गया
4: जी,
5: कुछ जख्म ऐसे हुए फूलों पे सोया न गया, दिल जल के खाक हुआ आंखों से रोया न गया।
4: काफी दर्द भरा आपका शेर है मैं का दर्द भरा शेर है आपका।
5: जी जी जी, जी। चलिए आपको देखते रहते हैं मैम यूट्यूब पे।
4: अच्छा चलिए बढ़िया, चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: नमस्ते मैम।
4: नमस्ते।

0: हेलो हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। मेरा नाम रवि कुमार है जी। मेरा नाम एयरपोर्ट से पौधा रवि सिटी कुमार पांचाल मैम जी।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: मैम बोल रहे हैं जी मैम आप मैम।
0: नहीं, महक मैम नहीं बोल रही हूँ, मैं गेशना बात कर रही हूँ।
1: जी मैम, बहुत आपका बहुत बढ़िया प्यार से अंदाज है बात करने का मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मुझे तो मैम मैम भी तो आ गई है
0: हाँ, महक मैम भी आते हैं पर आज आज नहीं है वो यहाँ
1: जी।
0: पे।
1: मुझे उनकी बिल्कुल नहीं पता। आपकी भी मैम बहुत अच्छी है अंदाज आपका बात करने का। भगवान आपका सुख शांति बता रानी कृपा बनी रखे मैम आपके। हाँ
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।
1: और बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बस ममता माता रानी से एक बार जी, ममता माता रानी का भजन सुनना जी।
0: जी बताइए, कौन सा सुनेंगे?
1: खिलाड़ियों खिलाड़ियों रवि मार से रवा लिए।
0: जी चलिए, आपकी पसंद का ये जो है भजन, आप भी भेंट है जो हम आपको सुनवाते हैं।
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते।

साथियों, बात करते हैं ओवरथिंकिंग से खराब होती सेहत पर। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचना, बार बार उसी बात में उलझे रहना और नतीजों को लेकर चिंता करते रहना। ओवरथिंकिंग से सेहत पर असर, लगातार सोचते रहने से दिमाग थक जाता है, इससे स्ट्रेस बढ़ता है, नींद की समस्या यानी इंसोम्निया हो सकता है, दिल की धड़कन तेज होना और घबराहट महसूस होती है, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है, ओवरथिंकिंग से एंग्जाइटी बढ़ती है, लंबे समय में यह डिप्रेशन का कारण बन सकती है, शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है, सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है, पेट से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, आत्मविश्वास कम होने लगता है, छोटे छोटे फैसले लेना भी मुश्किल हो जाता है, रिश्तों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है, इंसान वर्तमान में जीना भूल जाता है, हर चीज में नेगेटिव सोच आने लगती है। अब ओवरथिंकिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को लिखना शुरू करें, यानी कि लिखकर आप जान सकते हैं कि आपके मन में आखिर दिमाग में चल क्या रहा है। दिन में कुछ समय खुद के लिए रखें, गहरी सांस लें, योग प्राणायाम की सहायता लें, खुद को व्यस्त रखें किसी अच्छे कार्य में जो आपको करना पसंद हो, कोई हॉबी हो सकती है, और हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश ना करें। सकारात्मक लोगों का संग रखें, सकारात्मक चीजें देखें, पढ़ें और उनका हिस्सा बनें। साथियों, हर बात का हल तुरंत सोचना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चीजों को समय पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अच्छा सोचें और बेहतर जिएं।

साथियों, इसी के साथ ही कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र संपन्न होता है। एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में।

हरिओम शरण की गई इस भक्ति रचना के साथ हमने शुरुआत की आज के रंग तरंग कार्यक्रम की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रचना की ओर।

सुधा मल्होत्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल, तर्ज बनाई थी जगजीत सिंह ने। चलिए अब जगजीत सिंह की आवाज की ओर बढ़ते हैं। कलाम है जावेद अख्तर का।

तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। दिल भी तू जहाँ भी तू एल्बम से जगजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है, क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके

फैज अनवर ने इस गाने को इस गाने को लिखा था सोनू निगम की आवाज़ जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाज़ों की ओर।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: चलिए बढ़ते हैं अब रंग तरंग कार्यक्रम में अगली रचना की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, मन्ना डे और साथियों का स्वर। जी हाँ, फिल्म का नाम तीसरी कसम।

जजवा दो कनिया आ रे कपड़ा के सब रस

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधिर द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी। अनजान ने इस गाने को लिखा था, बप्पी लहरी का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनिया।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ की ओर।

0: विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।
1: अरे

सीता और गीता फिल्म से ये दो गाना आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतजार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतजार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

0: नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

तो आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज़ में, शकील बदायूनी की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज का ये कार्यक्रम सजा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

शांतनु मोइत्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजें थी। और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज की ओर। पहचाना ये गाना, बहुत सुना सुना सा है, जरा गौर से सुनिए।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में। उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे क्यों है, क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम दो दुनी चार।

0: के नाम।
1: तो साथियों, दो दुनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सुरीला सफर कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट, एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसी में से कुछ शब्द चुनते हैं और उन्हीं शब्दों के आसपास घूमते हैं कुछ गाने जो हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज का टेक्स्ट आप तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी मैं वो टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ। तो आज का टेक्स्ट है, आज की इबारत है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है। तो भाई, ये तो था आज का टेक्स्ट और इसी में से कुछ शब्द हैं, और वैसे शब्द तो आपने ढूंढ ही लिए हैं और गानों के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की पंक्तियां जीवन के अनवरत संघर्ष, प्रेम और आशा के बीच संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं। तारों की टिमटिमाहट में छिपी मोहब्बत और चांद की शीतलता से अंधेरे को सहलाने का रूपक दिल के गहरे जख्मों पर मरहम जैसा सुकून देता है। और आगे लिखा है, सबसे मार्मिक बात यह है कि दुनिया की हकीकत इंसान को थका देती है, लेकिन सूरज की हर सुबह ये यकीन दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझती। आज शब्दों के माध्यम से रचा गया एक ऐसा सुकून भरा मंजर है जो तारों की छाओं में जीने और सूरज की रोशनी में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। इन्होंने शब्द भी लिखकर भेजे हैं, शाम, रात, आसमान, ख्वाब, उम्मीद, चांद, टिमटिमाते तारे और सूरज। तो वैसे मैंने कहा ना कि शब्दों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप लोग।

0: कुछ और कमेंट हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, बड़े सुकून से लिखा है आपने ये कमेंट। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वक्त की बहती नदी में जब यादों के दीप जलते हैं तो तन्हाई की खामोशी भी एक सुरीली नज्म सी लगने लगती है। सर्द रातों में ओस की बूंदें जैसे जमीन के कानों में सुकून के किस्से सुनाती हैं और ढलता हुआ सूरज जाते जाते ये वादा कर जाता है कि हर ढलती शाम एक नई शुरुआत की दहलीज होती है। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आपने। आगे लिखा है कि इंसान अक्सर मंजिलों के शोर में रास्तों की खूबसूरती भूल जाता है और दुनिया की बंदिशों में अपने अरमानों को कैद कर लेता है, मगर हकीकत तो यही है कि जिस दिल में हौसलों की चमक और प्यार की गर्माहट होती है वो मुश्किलों की पथरीली जमीन को चीर कर भी अपनी खुशियों का गुलशन खिला ही लेता है। बहुत खूब। सच में साथियों, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दिल अगर सच्चा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
3: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
4: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी रीमॉडलिंग परियोजना के आरसीसी पाइपलाइन के कार्य 15 जून तक हर हाल में पूरे किए जाएं। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने यह निर्देश बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी रीमॉडलिंग परियोजना के औचक निरीक्षण के दौरान दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 41,30,00,000 रूपये की अनुमानित लागत से बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के रीमॉडलिंग कार्य को मंजूरी दी थी और इस परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो तथा सभी लंबित प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। सिंचाई मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूरे होने से चरखी दादरी शहर सहित आसपास के लगभग 35 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र के लगभग 2,30,000 लोगों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था और अधिक मजबूत एवं स्थायी बनेगी। उन्होंने बताया कि सिंचाई हेतु बेहतर जल आपूर्ति व्यवस्था से लगभग 1,50,000 शहरी निवासियों तथा लगभग 80,000 ग्रामीण नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना आने वाले वर्षों में क्षेत्र की बढ़ती जल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटरी के रीमॉडलिंग कार्य पूरा होने के बाद किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा पानी की आपूर्ति अधिक सुचारू और प्रभावी तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी। मेरा युवा भारत एवं केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जागरूकता कार्यक्रम और निबंध लेखक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों से परिचित कराना और उनमें राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के महत्व, भारत की वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास में युवाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत सारे सारे साथियों ने लिखा है कि ये कम सुना गाना है। जी हाँ, ये आपने कम सुना है लेकिन बेहतरीन गाना है। और एक साथी लिखते हैं कि शानदार गीत है, कम सुना है फिल्म ये रात फिर ना आएगी। और आशा जी की गायकी का तो अंदाज ही अलग है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चांद जब भी आसमान में आता है तो सुनहरे सपने साथ मिलाता है, रात में सपनों के आगोश में गहरी नींद लेते हैं, सुबह की लाली पहनकर जब सूरज निकलता है तो सब सपने वास्तव लगते हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने शाम की बात का जिक्र किया है, सच में शाम एक ऐसा वक्त है जहां उम्मीद खत्म होती है, तो सुबह वो पल है जो हर एक उम्मीद का एक नया पल एक वक्त लेकर आती है, एक सुनहरी किरण के साथ सुबह के साथ। और एक साथी स्नेहिल नमस्कार के साथ लिखते हैं कि शब्दों को चुराकर गीतों में संवारे में, और शाम ये दिल की कसम आ भी जा, आसमान से आया फरिश्ता, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो मैंने कहा ना कि आप लोग भी गानों के कुछ कुछ करीब पहुंच चुके हैं, शब्दों को तो आपने ढूंढ लिया लेकिन गानों के बहुत करीब हैं। एक कमेंट में लिखते हैं कि हवा के धीमे झोंकों में जब यादें अपनी दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की किताब का कोई पुराना पन्ना फिर से मुस्कुरा उठा हो। ढलती शाम अक्सर तन्हाई की सुर्खी ओढ़ लेती है लेकिन वही तन्हाई हमें खुद से मिलने का मौका भी देती है। इंसान अक्सर मंजिलों की चाह में रास्तों के सुकून को भूल जाता है और ज़माना उसे कामयाबियों के तराजू में तौलता रहता है, मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की भीड़ में खो जाने के बाद भी रूह की असली चमक वही पा सकता है जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर एक नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत गहरी और सच्ची बात आपने लिखी है कि टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर वो नई उड़ान भरने का हौसला रखता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि सदियों से मानव जाति ने चंद्रमा को प्रेम और प्रेमियों से अटूट रूप से जोड़ रखा है, कहीं पर वो प्रेम करने वालों को आपस में एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में एक बात करने वाला साथी भी मानते हैं। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि आज की इबारत बड़ी दिलकश है। तो दूसरे साथी ने लिखा, आज शब्द गीतमाला में दोपहर में ही शाम रात और चांद की बात होगी तो शीतल चांदनी का अनुभव कराते हुए गाने इस चिलचिलाती धूप की तपिश में थोड़ा सुकून का एहसास जरूर कराएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मियों में गाने बड़ा ही सुकून देते हैं साथियों। एक साथी ने ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है हमारे पास, लिखते हैं इबारत अनुरूप संभावित गाने हैं, टिम टिम तारों के बीच, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, चांद सी महबूबा हो, ठंडी हवाएं, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका सुबह का तारा, सच्चाई छुप नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत दिल के अरमानों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है, शाम की रूमानी ख्याल रातों में अंगड़ाई लेती है, टिमटिमाते तारे चांद की ठंडक उन पर स्नेह की वर्षा करती है, सुबह जब ख्वाब टूटता है तो सूरज की रोशनी मानो पुकारती है, चलो अभी मंजिल दूर है, बहुत कुछ करना है, बहुत चलना है। ख्वाब और हकीकत का ताना बुना पर आधारित लाजवाब इबारत है, संगीत में सफ़र का इंतज़ार रहेगा। तो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है।

साथियों बताइएगा जरा कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो वो ख्वाहिश क्या होगी, जरा बताइए। तो जब जिक्र आसमान का चला है तो हम भी जरा देखें कि कौन है वो फरिश्ता जो हमें प्यार का सबक सिखाने के लिए ऊपर से आया है।

मोहम्मद रफी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है, वाह भाई वाह, एन इवनिंग इन पेरिस का ये जबरदस्त गीत, हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है, शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस ज़िंदगी में तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में, आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है, आपका जवाब हमें मिल गया। बहरहाल कि आपकी ख्वाहिश यही है। तो भाई दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजीब सा लगता है यज्ञ सफल हुआ, लंबे इंतजार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफ़ी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहाँ मिलता है जहाँ हरियाली, पानी, नदियों की कलकल, झरनों का कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहट हो, और इसी को बचा कर रखना हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ, और वो साथी जो अब तक शब्दों का चुनाव नहीं कर पाए हैं उन्हें शायद सहूलियत हो जाए। तो आज का टेक्स्ट है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने

देखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है, और आपको खोजने हैं इनमें से शब्द। एक कमेंट आया है कि आपने सही कहा, जो भी फैसला हो, अच्छा या बुरा, हमें दोनों को स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ देखें तो सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है, जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि नया आसमान खोजने का साहस रखता है। एक साथी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत है, उत्सुकता दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ, गीतों का आनंद ले रहे हैं हम, आप आए बाहर आई और आपके कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुंच रही है। बहना जी बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, आप सभी का दिन शुभ हो। तो वहीं एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, अभी तक के सुरीले सफर में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं, कुछ अनसुना गीत, कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है और बड़ी ही उसकी जो शब्द हैं बहुत ही सुंदरता से चुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुखड़े से की है, ये प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रोमांटिक माना जाता है, जो मिलन और विरह दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। गीतों में चांद से बातें करना या उसे संदेश वाहक बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत शामिल, आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।

एक कमेंट में लिखा है कि वही सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचें, तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों, हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा पैगाम लाती है। आप बताइएगा कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम, उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज़ अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। ज़रा बताइए इसके शायर का नाम।

0: तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सब ने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नज़र आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफ़ी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा, ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फ़ोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती है। मैं हर रोज़ ही, कल ही मैंने एक फ़ोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया क्या लिखा है इन्होंने, जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96.96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आँखों में गर्व की चमक को देख कर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है माता पिता के लिए, गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फहरिस्त पेश करता हूं। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की ज़िंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान, आप सभी को नमस्कार और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है और दोपहर के चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई, खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है, ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है, ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है, ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है, इसके गीतकार और संगीतकार कौन है सुनिए ज़रा।

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सब ने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था और इसमें गायक स्वर थे

तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आज़ादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है, और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अगर कहीं तारा जमीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूँगा कि मुझे वो हिम्मत फरहाम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूँ। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों, ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफ़र तय करते रहें। साथियों, बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बना कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते लेकिन हाँ, अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं ज़रा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

एक साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूट कर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमारे एक साथी ने लिखा है गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत संगीत राहुल देव, शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा यादगार शाम 27 मई साल 16 की है, 2016 की शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था। बेहतरीन उपहार और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है, संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सबने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफ़र की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए जरा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नज़र रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

0: प्यार हुई।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर, जी हाँ अब समाप्ति की ओर, क्या समाप्त हो ही गया क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला

0: स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर और नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ER News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

0: नजर को दिल,
1: किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूँ फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई, दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

0: बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

0: आशिकन।
1: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की कस्मों की और मोहब्बत में फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का, शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, आइए।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा महेश्वरी और
2: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
2: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
1: भाई देखो कितनी गर्मी है।
2: हाँ?
1: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
2: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
1: जी
2: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, खास तौर पर क्योंकि एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
1: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीज़ें चलती हैं, और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
2: बिल्कुल,
1: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
2: हालांकि तो, समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे, आजकल क्योंकि समय बदल रहा है हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो एक हफ्ता 10 दिन का समय निकाल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं।
1: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं।
2: हाँ।
1: क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए हैं तो घर में शांति है, सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
2: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं, और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, 4 शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं,
1: यानी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
2: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं।
1: जी, और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में,
2: जी,
1: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में।
2: जी,
1: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं,
2: और
1: व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
2: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते हैं ना घर को सजाने वाली चीज़ें बना रही हैं। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए, तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे, और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में, जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
1: जी
2: है।
1: आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियाँ देंगी।
2: इसके अलावा 2 खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
1: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है, और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना,
1: और वो लेट जाए बस, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी हैं, वो बहुत नाजुक होता है
0: जी।
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा

0: रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है, एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
1: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, हाँ। बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों, या आपके बागीचे में लगे हों, या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ पे आप लगा सकते हों, तो ज़रूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
0: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
1: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रास्ते की निशानी बन जाता है,
0: हाँ।
1: भाई तुम आगे वो रास्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना, हाँ। है ना, कई बार ऐसा होता है।
0: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके, और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती हैं।
1: बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
0: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है
1: जी,
0: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं,
1: सही के बाहर
0: ताज़ा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफ़ी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इस बार भी और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है। इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज़ बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज़ दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टियाँ लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय: ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं।

0: आइए, लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकलें। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं, और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुँची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये ख़ास तौर पर वो ज़रूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा महेश्वरी
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
3: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजें, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
2: बिल्कुल।
3: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
2: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई, फिर कई टूर्नामेंट

0: में वो जाती थी और वहाँ पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये मतलब ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
1: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था ये एक पृष्ठभूमि जाँच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
0: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहाँ से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
1: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीज़ें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
0: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफ़ायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
1: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफ़ी किफ़ायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेज़ी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
0: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
1: हाँ,
0: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी।
1: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज़ पर काम कर रहा है।
0: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
1: और वनीता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और इस तरह से कहते हैं ना कि वो आगे बढ़ती रहीं और अपनी मंजिलों को हासिल करती रहीं, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहें।
0: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
1: जी।

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की 1 लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता। एक और संदेश है, 100 सुनार की 1 लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की 1 लोहार की ये लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का 1 लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके 1 सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं, और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे, और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया, और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की 1 लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चे और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ ज़रूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल, कि आप वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है। तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियाँ सुनाना बड़े मज़े से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियाँ नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियाँ उनकी चार चार दिन, पाँच पाँच दिन ख़त्म ही नहीं होती थी। हम इंतज़ार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएँ किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज़्यादा तेज़ धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मज़ा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्ज़ी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में काम करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई हैं, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों के जो आप बात कर रही थी ना, कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
0: हाँ,
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीज़ें होंगी ना, तो बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे बड़ा हो रहा है।
0: इसी तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, और बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी, अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी,
1: ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
0: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब ख़राब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
0: जी।
1: और क्रिएटिव है
0: जी।
1: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया।
0: जी, ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
1: जी,
0: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें।
1: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
0: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
1: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूम कर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाज़ारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
0: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
0: जी।
1: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
0: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: दिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे ख़त्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
2: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
2: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
2: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
2: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता जी, है हेलो फरमाइश।
2: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले
1: लेकिन
2: लो।
1: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
2: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
2: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
2: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
2: जी।
1: वो प्यासा फिल्म

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरी अनंत जोक कर रहे हैं।
1: जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह,
1: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए, लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज़ बज रही थी, आँखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दूरवांची जोड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
0: जी,
1: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
0: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
1: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहाँ गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
0: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
1: जी
0: जरूर सुनेंगे।

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरापुरकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं आप, ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने। और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन सी शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे हैं, ढाई तीन सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। दो ढाई दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था।
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी जी।
1: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक ख़त्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फ़ोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहाँ भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो, खुद उधर जाने की ज़रूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वहीं रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज़ के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी, और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी हैं, और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
0: जी।
1: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज़ से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियाँ मिलती है लेकिन हमें तालियाँ मिलती है।
0: तो उम्र एक अलग चीज़ है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है, मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में

0: इच्छा पैदा करे ऐसा होना चाहिए
1: जी।
0: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूँगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे कैसे कपड़े पहनेंगे वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
1: जी।
0: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
1: जी जी।
0: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो साड़ी पहन कर बात करता है। तो बोले ज़रूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फ़ोटो निकालने की। तो वो मैंने फ़ोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार हैं वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूं, फोटोग्राफी करता हूं, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो ज़रूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता हूँ।
1: वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने जी। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ उनसे सीखता हूँ उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा ज़रूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर वीवा शिरवाड़कर जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो। हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात। कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की माया ही हो गई जैसे।
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी,
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी,
1: ये।
0: जी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। हमारी सायंकालीन सभा में तमाम सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। आइए अब आपको जानकारी दिए देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

कार्यक्रम गीता संदेश आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, जिसमें आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 से श्लोक संख्या 1-3 तक की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर CDS कौशल की। युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:30 पर, और कार्यक्रम गाने नए पुराने सुनिएगा शाम 5:05 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसानवाणी लेकर हम आएंगे शाम 6:30 पर, और कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिएगा शाम 7:00।

कार्यक्रम आपकी बात जो कि आधारित रहता है आपकी भेजी हुई प्रतिक्रियाओं पर यानी आपकी भेजी हुई ईमेल्स पर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 7:30 पर।

व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा रात्रि 10 बजे। कार्यक्रम चांदनी रातें।

हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप इस प्रकार से सुन पाएंगे। रात्रि 9:15 पर होगा कार्यक्रम आपके लिए और कार्यक्रम छाया गीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 9:30 पर।

ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गाने नए पुराने। दोस्तों, जहां सुरों की महफिल में मिलते हैं बीते दौर के सदाबहार नगमे और आज के दौर के दिलकश गीत, पुरानी यादों की मिठास और नए संगीत की ताजगी लेकर हम आए हैं आपके साथ कुछ ऐसे गीत जो दिल को छू जाएं और होठों पर मुस्कान ले आएं। तो तैयार है ना आप संगीत के इस खूबसूरत से सफर के लिए, क्योंकि अगले कुछ पलों तक साथ रहेगा सुरों, यादों और मनोरंजन का शानदार सा। तो कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति है फिल्म मुल्क से। आवाजें हैं शफाकत, अमानत अली, अरशद हुसैन और गीत को लिखा है शकील आजमी ने, संगीत है अनुराग शेख का।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म दिलवाले से, आवाज कुमार सानू की, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में फिल्म शिकारी का गीत। गीतकार हैं फारूक कैसर और संगीत दिया है जी एस कोहली ने।

और कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, फिल्म है अग्नि साक्षी, समीर के बोल जिन्हें लयबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

आप सुन रहे हैं इस वक्त संजय पाठक और सपना अवस्थी को। फिल्म है भूरी, गीत और संगीत है संजय पाठक का।

दोस्तों इसी गीत के साथ इजाजत दीजिए आज के इस कार्यक्रम से, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है हमारे तमाम सुनने वालों का आज आपके साथ आपके अपने इस खास प्रोग्राम में हैं आपके रेडियो दोस्त ज्योतिषमा। स्वीकार करें बहुत ही प्यारा सा नमस्कार दोस्तों। जोश जुनून और नए विचारों से भरे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं हम दिल से। ये वो कार्यक्रम जिसमें आपकी सोच, आपके सपनों और आपकी आवाज़, जी हाँ, आपकी बातों, आपके मतलब की बातों का जिक्र होता है, जहाँ बात चुनौतियों की, आपके करियर की, मोटिवेशन की और बदलते दौर में आपकी भूमिकाओं की रहती है। युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी ताकत है और यही सोच, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से हर मंजिल को आप पा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए प्रेरणा, जानकारी और उत्साह से भरी शानदार यात्रा के लिए, क्योंकि आप शुरू होने जा रहा है आपका अपना प्रोग्राम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, आज जिक्र कर रहे हैं हम आपसे पौधों का, पौधों की बातें, यानी कि हरे भरे ये प्यारे छोटे से जो पौधे रहते हैं, पेड़ों की नहीं पौधों की बात हो रही है। जीवन में जो खुशहाली लाएं, शुद्ध हवा और मीठे फल दें, धरती को ये स्वर्ग बनाएं, रक्षा करना इनसे सीखें और हर दिन पौधे भी लगाएं, पेड़ भी लगाएं, स्वस्थ रहें। जब सारे पौधे स्वस्थ रहेगा जीवन ही तब। अब पौधों का आज है खास दिन, पौधों के स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय दिवस है आज। पौधे हमारे जीवन का जो आधार हैं, भोजन, ऑक्सीजन, औषधियां और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में सहायता करते हैं और यही पौधे स्वस्थ रहेंगे तभी मानव जीवन का अस्तित्व रह पाएगा, पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा। और इसी उद्देश्य से पौधों के स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में पौधों की सुरक्षा और उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। आज के समय में जब हम प्रदूषण और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण पौधों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और कई प्रकार के रोग कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे कृषि उत्पादन कम होता है और इसका सीधा प्रभाव किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। इसलिए पौधों की देखभाल बेहद ज़रूरी है और इस दिवस पर, इस जो ये आज खास दिन मनाया जा रहा है, इस पर स्कूल्स में, कृषि संस्थानों और सामाजिक संगठनों द्वारा वृक्षारोपण, जागरूकता रैलियां तथा पौधों की देखभाल से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों को जैविक खेती अपनाने, पानी की बचत करने तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। दोस्तों, हमें यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि स्वस्थ पौधे ही स्वस्थ जीवन का आधार हैं। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ही प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पौधों की सुरक्षा और संरक्षण में अपना योगदान दे तथा पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने का संकल्प ले।

0: tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
5: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
3: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
5: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
3: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
5: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें
3: आकाशवाणी
5: विश्वास की आवाज।
6: स्वागत है तमाम सुनने वालों का फिर से। और दोस्तों, आज एक छोटा सा मैसेज या छोटा सा संदेश जो आपसे साझा करना चाहते हैं वो ये है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ प्रतिभा की नहीं बल्कि हमारे अच्छे व्यवहार और सकारात्मक सोच की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ भी रहें, चाहे आप घर हों, कॉलेज हों या ऑफिस में, वहाँ ऐसा माहौल बनाएं जिसमें शांति, सम्मान और सहयोग महसूस हो। दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचने या बेवजह आलोचना करने से केवल तनाव बढ़ता है और ऐसे में आप भी आलोचना के पात्र हो सकते हैं। और एक सच्चा युवा वही है जो अपनी ऊर्जा को सीखने, मेहनत करने और दूसरों को प्रेरित करने में लगाता है। हमेशा प्रोडक्टिव रहें, समय का सम्मान करें और अपने शब्दों से किसी का मन दुखाने के बजाय उसे उत्साहित करें। याद रखिए कि सकारात्मक सोच और शांत व्यवहार की आपकी असली पहचान बन सकते हैं।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

और दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हर तरफ तकनीक की दुनिया बन चुकी है हमारी। तकनीकी युग है जहां हर दिन कोई ना कोई नई खोज, कोई ना कोई नई सुविधा सामने आ रही है। आधुनिक तकनीक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, संचार और मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकें युवाओं के भविष्य को नई दिशाएं दे रही हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज सबसे अधिक चर्चा में है। यह तकनीक मशीनों को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। शिक्षा में AI आधारित ऐप्स छात्रों की पढ़ाई को आसान बना रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में यह बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद कर रही है। साइबर सिक्योरिटी भी आज युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। वहीं डिजिटल दुनिया में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी से बचने के लिए साइबर सुरक्षा की जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रोबोटिक्स और ऑटोमेशन उद्योगों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट का सही उपयोग युवाओं को ज्ञान और अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मानसिक शांति और समय दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि तकनीक का उपयोग समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ करें, उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें, अप्लाई करें। और आज का समय नए स्किल्स सीखने का है। जो युवा तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलेंगे, वही भविष्य में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे।

दोस्तों, इसी सब के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपने जीवन में सिर्फ तरक्कियों के लिए नहीं, बल्कि आसपास जो इर्द गिर्द आपके घट रहा है, घटित हो रहा है, उस सब पर भी गौर कीजिए, क्योंकि ये सब भी ज़रूरी है। मौसम का भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए कि धूप में कम से कम निकलें, ज़रूरत हो तभी जाएं घर से बाहर, और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात कि अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए और अपनों का अपने से ज़्यादा ध्यान रखिए। इसी सब के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे व दोस्तों के लिए कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से कुछ ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी समाचार और शाम 6:10 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार हमारे रोहतक केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार पर बल दे रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 3 मई को ली गई नीट परीक्षा रद्द की, नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मिरीपीरी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को लेकर मिरीपीरी न्यास द्वारा दायर याचिका रद्द की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा परिणाम 84.67% रहा और हरियाणा निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों को आम चुनाव एवं उपचुनाव की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी की। मतगणना कल 8 बजे शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। श्री प्रधान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। अनुसंधान परिषद की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा,
1: आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा। हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को भारत के हजार वर्षों के इतिहास, संघर्षों और सांस्कृतिक चेतना से प्रेरणा लेकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा है कि यह निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मिरीपीरी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को लेकर आज मिरीपीरी न्यास द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया। कॉलेज का प्रबंध अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति संभालेगी। फैसला आते ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि उन्हें कानून पर विश्वास था।
2: हरियाणा के सिखा वास्ते अज बहुत वड्डा फैसला आया है। मिरीपीरी मेडिकल कॉलेज शाहबाद में 1991 इसकी नींह रखी गई। 2004 मेडिकल कॉलेज बनना शुरू होया। आज तक श्रोमणी

0: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀ ਅਪੀਲ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
1: उन्होंने कहा अस्पताल पर 100 करोड़ रुपए का ऋण है जिसका भुगतान अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सिंग अधिकारियों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि यह अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज शाम 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा परिणाम 84.67% रहा। भिवानी में एक पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने परिणामों से संबंधित आंकड़े साझा किए।
2: 2,42,856 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अपियर हुए थे, जिसमें से 2,05,618 परीक्षार्थी पास हुए हैं और कुल पास प्रतिशत जो है वो 84.67% रहा। छात्र और छात्राओं के विषय में बात करूं तो कुल 1,22,963 छात्र अपियर हुए थे, जिसमें से 1,151 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, उनका परीक्षा परिणाम 81.45% रहा है। 1,19,893 छात्राएं अपियर हुई थी और 1,05,467 छात्राएं पास हुई हैं। छात्राओं का जो परीक्षा परिणाम है वह 87.97% रहा है। छात्राएं ही उनका परीक्षा परिणाम 6.52% छात्रों की अपेक्षा ज्यादा रहा है।
1: उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रदेश की बेटियों ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। डॉ. पवन कुमार ने बताया कि प्रदेश के जिलों में चरखी दादरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं जिला नूह इस सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों का पास प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कुछ बेहतर रहा।
2: रूरल में जो पास प्रतिशत है वह 1,71,270 परीक्षार्थी जो थे, उनमें से 1,45,553 विद्यार्थी परीक्षार्थी जो पास हुए हैं और रूरल का पास प्रतिशत 84.98% रहा है। इसी प्रकार से अर्बन की बात यदि हम करें, अर्बन में कुल 77,586 परीक्षार्थी अपियर हुए थे, जिसमें से 60,065 परीक्षार्थी पास हुए हैं और अर्बन का परीक्षा परिणाम 83.91% रहा है, 9.91% रहा है। यानी जो रूरल का परीक्षा परिणाम है वह अर्बन परीक्षा परिणाम से बेहतर है।
1: उन्होंने कहा कि जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है उन्हें पुनर्जांच और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा दी जाएगी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों के आम एवं उपचुनावों की मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नगर निकाय चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। प्रत्येक चरण की निगरानी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। पंचकुला नगर निगम में मतगणना को लेकर उपमंडल दंडाधिकारी संयम गर्ग ने बताया,
3: पंचकुला नगर निगम इलेक्शंस की काउंटिंग के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेयर और वार्ड मेंबर्स की काउंटिंग साइमल्टेनियसली चलेगी। इसके लिए 20 टेबल का प्रबंध किया गया है, जिसमें से 10 टेबल मेयर की काउंटिंग के लिए और 10 टेबल वार्ड मेंबर्स की काउंटिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं।
1: उन्होंने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक एवं पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही मतगणना स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार पर बल दे रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 3 मई को ली गई नीट परीक्षा रद्द की। नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मीरीपीरी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को लेकर मीरीपीरी न्यास द्वारा दायर याचिका रद्द की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा परिणाम 84.67% रहा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीता संदेश। प्रस्तुति है डॉक्टर CDS कौशल की।
2: श्रोताओं, सादर नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज से 3rd अध्याय की व्याख्या आरंभ की जा रही है। शुभारंभ पहले श्लोक से किया जा रहा है। मानव को तेजस्वी, आनंदी, उत्साही और भाववान रखने वाली गीता की वाणी भगवान की दिव्य विचारधारा है। उसे झोंपड़ी झोंपड़ी, व्यक्ति व्यक्ति तक ले जाना, यह प्रभु कार्य ही तो है। इसी से सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और विश्व बंधुत्व का पथ प्रशस्त हो सकता है। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण वसुधा ही कुटुंब है, सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। जो लोग प्रभु कार्य के लिए धैर्यपूर्वक परिश्रम करते हैं, उनके सामने निश्चित रूप से प्रेम पूर्ण विश्व का विराट स्वरूप प्रकट हो जाता है। जरूरतमंद समाज को रोटी, कपड़ा और मकान अवश्य दीजिए, किंतु प्रभु के दैवीय विचारों को, गीता के तत्व ज्ञान को भी तो जन जन तक पहुंचाना उससे भी अधिक आवश्यक प्रतीत होता है। व्यक्ति में इतना सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए कि वह अपना रोटी, कपड़ा, मकान स्वयं अर्जित कर सके और जरूरतमंद की सहायता भी कर सके। लोगों को जीवन दृष्टि देना, उन्हें मंगता नहीं दाता बनाना, उन्हें पलायनवादी नहीं अपितु कर्म योद्धा, कर्मयोगी बनाना भी तो बहुत जरूरी है। धर्म के नाम पर अधर्म, न्याय के नाम पर अन्याय, ज्ञान के नाम पर अज्ञान के बादल छांटने के लिए गीता का स्वाध्याय, मनन, चिंतन बहुत जरूरी है। जगतगुरु आद्य शंकराचार्य के अनुसार गीता शास्त्र का अर्थ जानने पर सभी पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त होती है। योगी अरविंद के मतानुसार गीता अक्षय मणियों की खान है। यदि युगों तक इस खान से मणि निकालते रहेंगे तो भावी कर्णधार इसमें से नए नए अमूल्य मणि माणिक्य पाकर प्रसन्न एवं चकित होते रहेंगे। गीता का 3rd अध्याय तो कर्मयोग की सुंदर व्याख्या करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की 5 वासनाओं से प्रेरित होकर किए गए कर्मों में लिप्त मानव आसक्ति से ग्रस्त हो ही जाता है। इसी कारण सफलता, असफलता, हानि लाभ की ऊहापोह, चिंता तुरता बनी रहती है। सकामता व स्वार्थपरता से छूटना असंभव प्रतीत होने लगता है। राग द्वेष जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ते, परंतु पवित्र भाव से निस्वार्थ किए गए कर्मों को ही अनासक्त कर्म कहा जा सकता है। अपने स्वार्थ के लिए पीड़ा, छल छद्म से भरे मन से कर्म करने वाला ही फलासक्त कहा जाता है। न्याय व सत्य से परिपूर्ण कर्तव्य पालन मात्र के लिए कर्म करने वाला ही अनासक्त है। भगवान कृष्ण ने किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन योद्धा के सभी संशयों को दूर कर दिया तो उसने न्याय व सत्य के लिए अपना क्षात्र धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसका सारा भ्रम भय जाता रहा। गीता ऐसा योग शास्त्र है जिससे जीवन की कला जागृत हो जाती है। अनासक्त कर्म करने वाला सत्य रूप भगवान की शरण लेकर सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जहां कर्तव्य बुद्धि जागृत करने वाले श्री कृष्ण विद्यमान हैं, उनका स्मरण व चिंतन है, साथ ही अनासक्त कर्म योद्धा अर्जुन है, वहीं सुख, शांति, आनंद, समृद्धि प्रकट हो जाती है। और 3rd अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने जिज्ञासा व्यक्त की है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। यदि हे जनार्दन कर्म से तुम बुद्धि कहते श्रेष्ठ हो तो फिर भयंकर कर्म में मुझको लगाते क्यों कहो। अर्जुन ने बुद्धि योग से, ज्ञान से कर्म को हीन समझकर यह प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर

0: कर कर्म में क्यों लगा रहे हो? सर्वैः जनैः अर्ध्यते याच्यते इति जनार्दनः, अर्थात सब लोगों के द्वारा जो याचना किया जाता है वह जनार्दन है। अर्जुन भी कर्तव्य बोध की याचना कर रहा है। उसका जो संशय है कि ज्ञान और कर्म में से क्या श्रेष्ठ है, द्वितीय श्लोक में भी इसी को ही पुनः पूछा गया है। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोह माप्नुयाम। उलझन भरे कह वाक्य भ्रमसा डालते भगवान हो, यह बात निश्चय कर कहो जिससे मुझे कल्याण हो। आपसे मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। जिन वचनों में कई तरह की बातों की परस्पर मिलावट हो, ऐसे वचनों को सुनकर जिज्ञासु किसी एक निश्चित मत को समझ नहीं पाता। अर्जुन को भी भ्रम हो रहा है। भगवान कृष्ण ने तो बुद्धि योग अर्थात समत्व बुद्धि की बात की, अर्जुन उससे केवल ज्ञान का भाव समझ बैठा। ज्ञान की अपेक्षा कर्म निकृष्ट है समझकर उलझ गया, वह अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सका। निस्त्रय गुण्यो भव आत्ममान भव, ऐसे वचनों से वह कर्म के त्याग का भाव समझता रहा। तस्माद् युद्धस्व भारत ततो युद्धाय युज्यस्व तस्माद् योगाय युज्यस्व, इन कथनों से कर्म करने का आदेश भी दिया गया है। तो वह कभी पूर्व अध्याय में ज्ञान की प्रशंसा सुनता है तो कभी कर्म करने की प्रेरणा के वचन सुनता है, तो उसका भ्रमित हो जाना भी स्वाभाविक है। भगवान कृष्ण की भावना तो यह है कि अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म को समत्व बुद्धि से करे, तो वे पुनः और अधिक स्पष्ट करते हुए उत्तर देते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। पहले कही दो भांति निष्ठा ज्ञानियों के ज्ञान से, फिर योगियों की योग निष्ठा कर्म योग विधान से। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि प्रायशः ज्ञान के नाम से व्यक्ति कर्म से भागना चाहता है, भक्ति के नाम पर अकर्मण्यता का प्रवेश हो जाता है। और इस उलझन से दूर करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में कुछ तो ज्ञान मार्गी होते हैं। इस स्थिति में मनुष्य आत्मा और परमात्मा का अभेद मानकर अपने को भी ब्रह्म से अभिन्न समझता है। प्रकृति से उत्पन्न सारे गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मान समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होना, अहमता ममता आसक्ति का अभाव, सच्चिदानंद ब्रह्म में लीन रहते हुए ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति करना ही सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आता है। यही ज्ञान निष्ठा है। और अपने गुण कर्म स्वभाव पर स्थिति के अनुसार शास्त्रानुसार स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों का न्यायोचित रूप से कर्तव्य बुद्धि से आसक्ति रहित होकर सिद्धि असिद्धि में सम रहकर कर्म करना ही कर्म योग की निष्ठा है। इसी में परमेश्वर को सर्व प्रेरक मानकर सत्कर्म की भावना प्रधान हो जाए तो भक्ति प्रधान कर्म योग की निष्ठा हो जाती है। सांख्य योगियों की ज्ञान निष्ठा में ज्ञान योग में रत रहते हुए साधक देहाभिमान से रहित हो ब्रह्मलीन स्थिति का अनुभव करता है, उसकी भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है। निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन रूप का चिंतन करते करते वह एकाकार हो जाता है। कर्म योगी फलाशक्ति को त्याग कर भगवान को सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान समझकर उपास्य उपासक भाव से चिंतन करते हुए स्वकर्मों का समत्व बुद्धि से अनुष्ठान करता है, यही कर्म योग है। गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने गीता के तीसरे अध्याय के पहले दूसरे और तीसरे इन तीन श्लोकों की व्याख्या सुनी। धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम गीता संदेश, प्रस्तुति थी डॉक्टर CDS कौशल की। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लाए आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जुड़ी है समय मौसम परिस्थिति के साथ है, ताकि आपकी उस तरह संबंधित कोई भी समस्या हो या फिर आपके प्रश्न हो, उसका समाधान आप सीधे ही हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से कर सकें। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है यही है कि हमारा जो किसान साथी है बिना संकोच के बढ़िया वैज्ञानिक तरीके से खेती कर ले, कम लागत पे अधिक उत्पादन ले, ताकि उसके जो आर्थिक स्थिति है मजबूत हो। क्योंकि जब देश का किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा तब ये देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो जब बात फोन इन की है तो आज उसके लिए हमारा जो विषय रहेगा और रहेगा धान की सीधी बिजाई में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर करमचंद, उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र। उनसे बातचीत करेंगे वेंद्र भाई, और जो संपर्क सूत्र रहेगा जिसके माध्यम से साथी अपनी समस्या का समाधान पा सके वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र दरबार के हैं या मोबाइल तक फोन करेंगे उनके वास्ते एसटीडी कोड बहुत जरूरी है, और एसटीडी कोड है 01744, यानी 01744-221-322। और साथियों, तो एक प्यार बड़ा निवेदन रहेगा कि कोई भी विषय तय हट कर फोन ना करें, विषय तय संबंधित ही फोन करें, क्योंकि आप फोन तो कर दोगे लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं होने का, देखिए रेडियो पर नाम तो पक्का आ जाएगा, लेकिन जो साथी बाट में है कि कद उनका फोन मिला है, कद उनकी समस्या का समाधान हो, वह रह जाएंगे। तो इस वास्ते वही साथी फोन करें जिनका प्रश्न विषय से संबंधित हो। और विषय एक बार फिर आपने याद करा दिया, विषय है धान की सीधी बिजाई में सावधानियां। तो चला स्टूडियो में, करें बातचीत शुरू।
7: किसानवाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, फ़ोन नंबर है 01744-221-322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744-221-322। और हमारा आज का विषय है धान की सीधी बिजाई में सावधानियाँ, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर करमचंद जी, पूर्व उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
8: थैंक यू वीरेंद्र भाई, और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम।
7: डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि अब खरीफ के मौसम में लगने वाली फसलों की तैयारियों में किसान भाई जोर शोर से

0: जी जी,
1: जो रबी मौसम की फसलों से खेत खाली हुए उनकी जुताई वगैरह में करने में लग रहे हैं, जिससे थोड़ा सा हवा लग जा।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: और इसके साथ साथ जो है जो अहम फसल मानी जाए खरीफ मौसम की हमारे इलाके की, वो मानी जाए धान।
0: जी जी,
1: तो उसमें इन दिनों खरीफ के मौसम में धान की बिजाई की भी तैयारियों में लग जाए।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: पर यहाँ एक जहन में प्रश्न भी आवे है कि धान का एक तो परंपरागत तरीका रहा
0: हाँ जी
1: जो रुपाई करें थे पौध बोली, और एक अब आ रहा है कि भी धान की सीधी बिजाई करें, तो दोनों में पहली बात तो यह है कि अंतर क्या है,
0: बिल्कुल,
1: और दूसरा किन बातों का ध्यान दें यदि धान की सीधी बिजाई करनी है।
0: जी हाँ जी, वीरेंद्र भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि किसानों के लिए आपने बिल्कुल उचित समय पर यह टॉपिक चुना, क्योंकि अब किसान ने डिसाइड करना है कि 15 मई से मैं धान की नर्सरी की बिजाई करूं या अपनी सीधी बिजाई के लिए प्लानिंग करूं, वो उसने चयन करना है, और चयन के लिए सबसे पहले वो अपने खेतों को देखे, और ये जो विधि है धान की सीधी बिजाई, इसको पानी की बचत से जोड़ कर रखा गया, क्योंकि हमारे जैसे हम सबको पता है कि हमारा जो जितनी भी पृथ्वी है इसके ऊपर 31% एरिया पे पानी है
1: जी,
0: और वो जो टोटल पानी का अगर मैं 100 गिनूँ 100 में से 97% पानी खारा है, वो समुद्रों में है, सिर्फ 3% पानी ही हमारा पीने के लिए खेती में प्रयोग होता है, और 1% पानी इस 3 में से
1: जी
0: जो है प्रयोग कर सकते हैं हम, तीन जो बचता है
1: कि वो मीठा के लिए या फिर
0: मीठे के लिए कृषि में,
1: घरेलू कार्य कृषि का।
0: हाँ जी हाँ जी, और कृषि में सबसे ज्यादा पानी की बचत करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि 85% के आसपास कृषि क्षेत्र में पानी लगता है, और लगना भी चाहिए कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य है उन सब के भरण पोषण का कार्य कृषि से होता है, लेकिन इसमें बहुत सी तकनीकें आई पानी बचाने की, लेजर लैंड लेवलिंग आई, अंडरग्राउंड पाइपलाइन आई, स्प्रिंकलर आया, लेकिन धान की जो फसल है इसमें 4,000 से 5,000 रुपया प्रति 1 किलो चावल पैदा करने में पानी लगता है। उसको बचाने की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद।
0: जी
1: हेलो, हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम?
0: अच्छा, मांगेराम जी,
1: मांगेराम जी द्यांगला से।
2: हाँ जी हाँ जी,
1: आपका स्वागत है मांगेराम जी, अपना प्रश्न करें।
2: ये जो जीरी की सीधी कराना जी।
1: हाँ जी,
2: इसमें इसका एक तो कबाड़ नहीं करता जी, जी जी।
1: अच्छा, खरपतवार ज्यादा हो जाए,
2: बढ़िया नहीं है जी
1: जी,
2: और एक इसमें पानी ज्यादा भेजा दूसरी।
0: देखिए मांगेराम जी, आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इसमें कुछ यदि सावधानियां बरतेंगे हम, दोनों चीज़ों से वो बचत होगी, और इसका जो पानी ज़्यादा लगने वाली बात है ना, अगर आप सौंपी जमीन में यानी रेतली में बीजेंगे तो पानी ज़्यादा लगेगा, ये जो विधि वैज्ञानिकों ने चलाई ये डक्कर जमीन के लिए चलाई, रेतली में तो जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि वहां तो पानी ज्यादा लगता है, ऑलरेडी रिचार्जिंग होती है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जो डक्कर जमीन है जो पानी नहीं पीती उसमें हम धान की सीधी बिजाई करें, उसमें पानी भी कम पिएगी, और खरपतवारों का जो नियंत्रण है मैं अपनी पूरी बाइट में बताऊंगा भी आपको, तो आपको जैसे तरबत्तर में बीजना है तो तुरंत बिजाई के बाद आप पेंडीमेथिलीन का स्प्रे कर सकते हैं, और जो सूखे में बीजना उसमें भी आप तुरंत करें, लेकिन इससे पहले जो आज जो विषय रखा है, अभी बहुत समय हमारे पास, क्योंकि 25 मई से और जून के तीसरे हफ्ते तक हम इसकी बिजाई कर सकते हैं धान की सीधी बिजाई की, 25 मई से पहले ना करें, लेकिन आज खेत में पानी दें और खेत को बा के तैयार कर दें, जितने भी खरपतवार होंगे अभी सामजेंगे सारे, और जब आपको धान की सीधी बिजाई करनी है उस समय जब आप जुताई करेंगे लेजर लैंड लेवलर से एक सार करेंगे सुहागा लगाएंगे तो सारे खत परवार खत्म, फिर खत परवार नहीं होगा, नहीं जो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए आप अगर आपके खेत में एक तो धान की सीधी बिजाई उसी खेत में करें जिसमें धान लगाते आ रहे हैं आप, यदि आपने गन्ने वाले में दूसरे में कर दी तो वहाँ खरपतवारों की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, दूसरा कि आप अभी तो खेत की खाली पड़ा है ना खेत, तो अब सन बात करा दी हमने, पूरी धूप लगा दी खेत को,
1: खुल का पानी लगा दो,
0: खुल का पानी उसमें पानी लगा दो, पानी लगा के और जितने भी खरपतवार होंगे जाम जाएंगे, 25 मई या उसके बाद 20 दिन का समय जब भी आपका खेत बत्तर आता है उसको 2 बार अच्छे से बा के 2 बार सुहागा लगा दे, सुहागा लगाने के बाद तरबत्तर कंडीशन में आप धान की सीधी बिजाई करें
2: जी डॉक्टर,
0: ठीक है जी, तो
2: ठीक है
0: जी जी।
1: डॉक्टर साहब जैसा आपने कहा कि खरपतवार की समस्या, जी जी, जी, जी।

0: ये सही समाधान है, आधे खरपतवार तो
1: अभी मर,
0: तो अभी मर जाएंगे जो करसाव में पानी लगाएंगे।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: और वो एक तरह से पड़ेवा हो गया,
1: बिल्कुल
0: आ गया और वो जाम जाएंगे।
1: हाँ जी,
0: रहे जो है बाद में समय समय।
1: हाँ जी, देखिए इस स्कीम का जो हम कह रहे थे ना कि हमारा पानी बचत करनी हमें, इसकी तरफ रुझान है। सरकार का भी प्रयास है कि ऐसी तकनीकें लेके आए, क्योंकि धान की सीधी बिजाई एक ऐसी तकनीक है जिसमें 15-20% सीधा सीधा पानी बचता है और साथ साथ पैदावार पे कोई असर नहीं पड़ता।
0: अच्छा, पैदावार पे।
1: और 10 दिन पहले फसल पकती है
0: जी,
1: और जिसको छोटी किस्म की जो कम अवधि की किस्में लगानी है, जिसको मटर बीजना, आलू बीजना
0: है, उनको
1: इसको उसके लिए तो ये बहुत बढ़िया तकनीक है।
0: आपने कहा कि भी 10 दिन पहले पक रही है तो रबी मौसम की लगने वाली फसलों को और 10 दिन मिले,
1: बिल्कुल, और वो 10 दिन का समय फालतू मिलेगा। पराली बाहर निकालनी है आपको, अंदर मिलानी है, मैनेजमेंट करना है तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक समय बिल्कुल सही है डिसाइड करने का, और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि सरकार इसमें अच्छी सहायता दे रही है, 4500 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है।
0: अच्छा, जो सीधी बिजाई कर रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: ये अच्छी जानकारी दे रहे हैं। इसमें
1: कोई कंडीशन नहीं है, कोई कितना भी एकड़ लगाए, पिछले साल भी लगभग 1,00,000 एकड़ था, लेकिन जो डक्कर जमीन जिनके पास है,
0: चिकन मिट्टी के खेत,
1: चिकन मिट्टी के, वो जरूर इस विधि को अपना सकते हैं, क्योंकि इस विधि से रिचार्जिंग बढ़ती है, खरपतवार नियंत्रण ठीक होता है, पैदावार बढ़ती है, और जो चमक होती है ना इस विधि से पैदा की गई, बहुत बढ़िया। बासमती में खास 1500 लगाए आप, 11-21 लगाए, CSR 30 लगाए, मंडी में अलग दिखेगी।
0: मतलब इसमें कोई किस्म चुनाव का भी कोई अंतर नहीं है, कोई
1: हाइब्रिड भी लगा सकते।
0: डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल की।
1: जी
0: हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, आपका नाम?
2: मैं इंद्राज।
0: इंद्राज जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें।
2: प्रश्न जी, हमें हर साल का जी एक
0: हर साल क्या कर रहे हैं? आपकी आवाज कट कट का आ रही है, थोड़ा सा रेंज में हो जाएं आप।
2: रेंज में जी?
0: हाँ,
2: ऊपर।
0: अच्छा, हाँ बोलिए।
2: अब ठीक है जी?
0: हाँ, थोड़ा आ रही है अब।
2: हम जी फसल लेंगे,
1: आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल नहीं, रुक, कट रही है,
0: कट रही है आवाज बहुत।
2: देखियो,
0: हेलो।
2: हाँ जी, हाँ जी, देखियो
0: फोन से थोड़ा रेडियो वगैरह के आसपास हो तो उससे दूर हो जाए थोड़ा।
2: बहुत दूर हो जी?
0: हाँ,
2: अब देखिए जी।
0: हाँ बोलो, अब आइए।
2: हम जी गेहूं जीरी में फसल ले रहे
0: हैं। गेहूं जीरी की फसल ले रहे हैं? ठीक,
2: नहीं तो गेहूं लेंगे, जीरी लेंगे।
0: अच्छा, एक फसल ले रहे हैं, या तो गेहूं या जीरी?
2: या जीरी।
1: बीच में कौन सी लेते हैं?
2: बीच में जी धनिया, मूंग,
0: सब्जी वाली फसल ले रहे हैं,
1: धनिया
0: वगैरह। ठीक जी जी।
2: तो मक्के काट जीरी दिखती, फिर मक्का काट सब्जी वगैरह करते हैं।
0: अच्छा जी,
2: अच्छा जी, 2-3 किलो जो खड़ी उनमें जीरी का विचार है लगा लें, और फिर जो विचार है धनिया
1: का। हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब, इसके लिए तो देखो ऐसा करें आप बासमती लगानी है तो आप जून के पहले हफ्ते में लगाएं, लेकिन आप इसके लिए कम अवधि वाली किस्में लगाएं, ठीक है? हाइब्रिड लगा सकते हैं आप, और 8 किलो बीज बहुत है, उसका बीज उपचार कर लें, 10 ग्राम कार्बनडेजम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, वो बहुत जरूरी है, कई बार बीमारियां ना जमीन से आती हैं, ठीक है ना? और खेत की तैयारी अच्छे से करें, जिस खेत में आप लगा रहे हैं ना, क्योंकि धनिये में भी आपको कामयाबी देगी, उसको लेजर लैंड लेवलर से जो कंप्यूटर का अभी 1 सार करा लें, करा के पानी दे दो, बा दो, और जितने भी खरपतवार होंगे अभी जाम जाएंगे,
2: ठीक है?
1: हाँ, 25 मई से पहले बिजाई मत करना धान की सीधी बिजाई की।
0: इंद्राज जी, खेत कैसे हैं? इंद्राज जी, छोटी मिट्टी के हैं, डक्कर हैं,
2: थोड़े आर्रास हैं।
1: हाँ बढ़िया
0: बढ़िया,
1: बिल्कुल होएगी, ठीक है जी। और लक्की सीड ड्रिल का प्रयोग करें आप, लक्की सीड ड्रिल, उसमें क्या है, खरपतवार का स्प्रे साथ साथ हो जाता है, पीछे एक ड्रम लगा 200-250 लीटर का, उसमें वो दवाई पेंडेमैथिलीन 1.25 लीटर आप साथ साथ डाल सकते हैं, तो 2 बार ट्रैक्टर को घूमने की जरूरत नहीं है, वो साथ साथ बिजाई भी कर देगी और पीछे पीछे स्प्रे हो जाएगा पेंडीमेथिलीन का। और एक ध्यान रखना आपने भाई साहब सभी किसानों के लिए है, धान की सीधी बिजाई 3 बजे के बाद बाद करें, शाम के समय, ये खास ध्यान रखें,
0: सुबह ना करें।
1: सुबह करेंगे तो फिर अर्ली इन द मॉर्निंग करें, दोपहर में कभी भी ना करें
0: जी,
1: क्योंकि एकदम तापमान बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर सूख जाता है, बीज हमारा गिल्ला जरूर होगा, वो जाएगा तो उसमें नुकसान, जमाव के मतलब नुकसान होगा, कम जमा होगा। सबसे बेस्ट है पूरी रात गुजरेगी, 3 बजे के बाद बाद आप इसकी बिजाई करें। मैंने बड़ा तो कई जिलों में रहा हूँ, देखा है जिन किसानों ने 4 बजे बिजाई किया ना, बेस्ट जर्मिनेशन है उनका, और उनकी पैदावार में कोई कमी नहीं आई और बहुत बढ़िया पैदावार हुई। और जो हम रोपित धान है जो हाथ से लगाते हैं नर्सरी उगा के, उससे भी 2 क्विंटल फालतू आई है। फिर भी अगर बराबर आती है, 1 क्विंटल कम भी आती है, तो 4-5 हज़ार तो इसमें शुरू से बचत हो जाती है
0: आपकी,
1: ना नर्सरी लगानी, ना उखाड़नी
2: जी,
1: और ना खेत तैयार करना, पाड़े काटते हैं, कादो करते हैं
0: जी,
1: ठीक है जी। और 4500 रुपया सरकार दे रही है प्रोत्साहन राशि की, पानी बचे, क्यों सरकार ने सोचा कि पानी बचाना किसानों के लिए बहुत जरूरी है। और रहीम जी ने भी कहा ना, रहीमिन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उपजे मोती मानुचो, तो बहुत जरूरी है। तो इस चीज, हाँ, ये हमें सबको मिलकर बचाना पड़ेगा इस पानी को, क्योंकि पानी ही नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर,
1: ठीक है जी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखें और लगाएं आप, बहुत अच्छी होगी। कोई विषय तो मेरा नंबर नोट कर लें, 9481689243, आप बात कर सकते हैं कभी भी
0: जी। ये आपने अच्छा बताया डॉक्टर साहब के भी सब्सिडी, इसके ऊपर प्रोत्साहन राशि मिल रही है।
1: हाँ जी।
0: और दूसरा किसान भाइयों का जो लगाई का खर्चा है वो भी बच रहा है,
1: बचता
0: तो है। एक तरह से प्रोत्साहन राशि जो है डबल होगी, समझो
1: डबल होगी। प्रोत्साहन राशि इसलिए दे रहे हैं कि अगर खरपतवार कंट्रोल नहीं हो रहा किसान ने, क्योंकि तो अगर मैनुअल उखाड़ना है तो 2 लेबर कहीं कहीं खरपतवार रह जाता है उसको उखाड़ सकते हैं,
0: उसको उखाड़ सकते हैं, ठीक कह रहे हैं आपके
1: जी, उसका भी ऐसे ऐसे ऐसे कर सकते
0: हैं इसके ऊपर पड़ता
1: है। हाँ जी हाँ जी।
0: और जो आपने बताया कि भी बासमती भी लगा सकते हैं दूसरी,
1: हाँ, बासमती यदि आपको लगानी है तो बासमती आप लगाएं 5 जून से 20 जून तक, और यदि आपको गैर बासमती लगानी यानी परमल धान लगानी है तो 25 मई से और 15 जून तक का बिल्कुल सही समय है, इसमें आप लगा सकते हैं, बिल्कुल पैदावार होगी। और साथ साथ भाई किसान भाइयों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, पिछली बार आपने धान की रोपाई करके कुछ खेतों में कई भी किस्म लगाई थी तो बोना वायरस आ गया था, डिजीज आ गई थी, तो मैं सोचता हूँ कि आज आया हूँ तो आपको उसके लिए अभी आगाह कर दूँ, गेती धान बिल्कुल भी ना लगाएं। जिस भी किसान ने गेती धान लगाई थी उसके खेत में वो बीमारी आई, और जिस किसान ने नर्सरी की बिजाई सफेदों के नीचे पेड़ के नीचे छाया में की थी उसके वो बीमारी है, और जिसने लगाते ही यूरिया का पूरा कट्टा डाला
0: डॉक्टर साहब चर्चा मरी जा रही
1: उसके भी खेत में आई ज्यादा।
0: फोन कॉल
1: जी जी।
0: हेलो
2: रेडियो आवाज आएंगे।
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। आपका नाम?
2: बलदेव सिंह जी।
0: बलदेव सिंह जी। गाँव का नाम? सहरसा जी का। बलदेव सिंह जी आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें।
2: जीरी के बारे में पूछ रहे थे।
0: हाँ जी पूछिए, जीरी के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं।
2: धान के बारे में?
0: हाँ धान के बारे में बात करूं।
1: नहीं कोई नई किस्म की, देखिए कोई भी हाइब्रिड 75-01, 73-01 बहुत मिल रहा है, सवाना का आप हाइब्रिड ये लगा सकते हैं, हमारे पास दूसरी किस्में बहुत हैं। आप बासमती लगाएं 15-09, 11-21 SR30 आप ये लगा सकते हैं। और
2: अभी मोटी
1: हाँ मोटी आप लगाएं कोई बात नहीं, 14 लगाए, 26 लगाए, 28 लगाए, कोई भी लगाए बढ़िया है, ठीक है। और आप धान की सुनो, आप धान की आप सीधी बिजाई करना चाहते हैं कि नर्सरी लगाना चाहते हैं?
2: पौध भोग है
1: ठीक है। तो आप 15 तारीख से पहले पौध बिल्कुल ना बीजें। अच्छा। और 15 जून से पहले ना लगाएं, क्योंकि पिछली बार ये तजर्बा देखा हमने, खासकर बहुत किसान बेचारे इसमें लुट चुके थे, बहुत एरिया खराब हुआ, बोनी
2: 15 के बाद
1: हाँ 15 के बाद ही बीजना और 15 जून के बाद लगाना, तो जो बोने डिजीज की जो फिजी वायरस नहीं आया था सारी फसलें
0: बोना पड़ा गया था बहुत से
1: वो नहीं आएगा, ऐसा करेंगे। और धान
2: 17-9
1: हाँ ठीक है जी जी जी जी जी ठीक है जी।

0: तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे धान की सीधी बिजाई पे
1: जी,
0: और किन किन बातों का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। एक इसमें डॉक्टर साहब आपने सीधी बिजाई का जिक्र कराया, एक मशीन का लक्की सीड ड्रिल,
1: हाँ जी,
0: तो इसमें क्या फासले का भी ध्यान रखना पड़ेगा?
1: हाँ देखिए, इसमें लाइन से लाइन का जो फासला है 20 सेंटीमीटर और जो गहराई है उसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट है 3 सेंटीमीटर।
0: अच्छा, गहराई भी
1: वो ऑटोमेटिक है और उसमें खासकर ये सबसे मॉडर्न मशीन आज की डेट में, यदि किसी किसान पे ये नहीं है तो सिंपल सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: उससे भी कर सकते हैं।
0: और जो डॉक्टर साहब पुरानी विधि छिंटे से बोना चाहे?
1: नहीं, छिंटे से उसमें स्पेसिंग का, प्लांट पॉपुलेशन का, देखिए जब भी कोई फसल हम लगाते हैं पौधों की संख्या का मेन रोल रहता है खेत में
0: जी,
1: कि प्रॉपर हो और हमारा खेत खाली ना रहे।
0: वो कहते हैं ना भाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन,
1: तो लाइन टू लाइन 20 सेंटीमीटर जैसे मैंने बोला इसमें जब रहेगा तो प्रॉपर पौधों की संख्या आएगी और हमारा पैदावार बिल्कुल ओके होगी
0: उसमें,
1: और वो अच्छा रहेगा और एक यूनिफॉर्मिटी भी आती है
0: जी। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, क्या इस बिजाई के दौरान इस मशीन में जिस तरह से गेहूं में खाद भी साथ साथ चले, इसमें भी खाद साथ चलेगा?
1: हाँ, इसमें चला सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है इसमें इस समय खाद डालने की।
0: अच्छा। और
1: उसके बाद जैसे हम धान की सीधी बिजाई में करते हैं तो जितना 130 किलो यूरिया डालना, जैसे परमल है तो 3 बार में डालें, चौथे हफ्ते पे अगर जल्दी डाल दिया आपने फिर प्रॉब्लम है, चौथे हफ्ते पे, छठे पे और नौवें पे 3 बार डालें।
0: अच्छा, ऐसे हफ्ते पे, छठे पे और नौवें हफ्ते?
1: हाँ जी, हफ्ता।
0: अच्छा, जो नीचे खाद दें डॉक्टर साहब कई बार,
1: यही एक गलती मैं उसको जिक्र करना आ रहा था, ये गलत हो रहा है,
0: वगैरह डाल दें।
1: हाँ, ये गलत है इसमें धान में।
0: चर्चा जारी रही,
1: बिल्कुल।
0: एक फोन कॉल
1: जी।
0: हेलो।
2: हाँ जी,
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी,
0: आपका नाम?
2: मेरा नाम कुलवंत है।
0: कुलवंत जी कहाँ से?
2: हरियापुर से।
0: कुलवंत जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न करें
2: जी।
0: हेलो,
2: मैं ये बात कह रहा था जी, पिछले साल हमने 26 जीरी लगाई थी।
0: अच्छा जी,
2: उसमें डोडी आ गई थी सारे में, बिकी नहीं फिर वो मंडी में भी।
0: अच्छा, डोडी बाद में जब निश्रण तैयार होने लग रही थी।
2: हाँ जी,
0: वो पीली पीली सी डोडी थी।
1: देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल आई थी, आपका सवाल बहुत वाजिब है। मौसम जब उस वायरस के होता है ना, अनुकूल होता है उस समय वो आ जाती है। बीच में हम चर्चा में आएंगे, जैसे आप गाबे पे आएगी ना हमारी फसल, उस समय हाँ आपको सावधानियां बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप भूल जाएंगे, नोट नहीं करेंगे कहीं, तो उस समय आप स्प्रे की रिकमेंडेशंस देंगे आपको, कोई बात नहीं, वो नहीं आएगी। और पानी उस समय जो ज्यादा लगाता है, नमी ज्यादा,
2: तो दूंगे खेत है सड़क के किनारे वाले,
1: तभी आएगी जहाँ पानी खड़ा होगा। यदि उस समय आप देखो बालियां आ गई हमारी पकड़े को तैयार हैं, उस समय आपको
2: कोई ऐसा बीज बताएं जिसमें डोडी ना आएगी?
1: नहीं, ऐसा कोई बीज नहीं है जिसमें डोडी नहीं आएगी। डोडी आना वैसे तो एक ये है कि उस खेत में बम्पर पैदावार हो रही है, वहाँ ज्यादा पैदावार है तो वहाँ आते हैं। लेकिन कई किसान गलती क्या करते हैं, पानी लगा देते हैं उसमें
0: जब
1: बिल्कुल पकने पे होती है, वो उसे कोशिश क्या करते हैं कि इस लास्ट पानी पे ही मैं बिजाई कर दूंगा कणक की।
0: हाँ, ये भी हो जाता
1: है। हाँ, ये होता है, ये होता है, वो बचाना चाहता है, लेकिन वो देखे कि संगड़ी जीरी खड़ी है, पैदावार बम्पर होने जा रही है और उसमें उस समय आपने पानी लगा दिया और वो जो हमारे वायरस एक पैसिव फॉर्म में पड़े रहते हैं जमीन में, एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, उनको उस वातावरण में ह्यूमिडिटी भी मिल जाती है, टेम्परेचर भी अप डाउन रहता है दिन का 30 डिग्री के आसपास, वो उस समय पनप जाती है। तो हमें टेम्परेचर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पानी लगाना हमारे हाथ में है कि लगाना नहीं लगाना उस समय। और एक स्प्रे भी होता है, उससे पहले हम स्प्रे भी करा सकते हैं उसका, नहीं आएगी फिर।
0: डॉक्टर साहब, ये समस्या जो किसान भाई ने जिक्र कराया कुलवंत जी ने
1: जी,
0: डोडी आ गई,
1: हाँ हाँ।
0: क्या ये सीधी बिजाई में भी संभावना बन जाए?
1: सीधी बिजाई में नहीं आएगी, क्योंकि सीधी बिजाई में पानी खड़ा ही नहीं होता, ये खास बात है,
0: बिल्कुल सही।
1: हाँ जी, कभी नहीं आई। और आप अगर आपकी जमीन भी सौंटी नहीं, यानी रेतीली नहीं है, तो आप सीधी बिजाई की तरफ अपना एक रुझान करें, उधर जाएं, बीमारी नहीं आएगी वो
0: जी। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जब आ रहे बात कर रहे हैं हम इसमें सीधी बिजाई के लिए
1: जी,
0: तो इसमें खाद का हिसाब किताब जो है या दवाइयों का छिड़काव जो है वो उनकी परंपरागत जो रोपाई करें उसके
1: नहीं,
0: उसका
1: थोड़ा सा नहीं, जो खादों की रिकमेंडेशन है उसी हिसाब से ही है, जैसे मैंने कहा 130 किलो यूरिया
0: जी,
1: तो उससे बिल्कुल ज़्यादा ना जाए, कम रहे तो बहुत बढ़िया परमल के लिए, ठीक है। खासकर हाइब्रिड ज़्यादा जैसे हम लगा रहे हैं
0: जी,
1: तो उसको भी जैसे मैंने बताया कि तीन पार्ट में बांट लें,
0: तीन बार में,
1: चार हफ्ते बाद डालें एक डोज तीन, ठीक है, और फिर आप छठे हफ्ते और फिर नौ में, उसके बाद बिल्कुल भी ना डालें। कई बार क्या करते हैं लास्ट में भी किसान डाल देते हैं, तो हमारे जो पौधे का सप्लाई सिस्टम है वो फूट बाली तक जाना चाहिए, तो यूरिया नीचे कल्ले फूट जाते हैं जड़ों में
0: जी,
1: और वो सारी सप्लाई वहीं रुक जाती है, अगर यूरिया उस समय डाल देते हैं तो ऊपर दाना कमजोर हो जाता है। अब देखो कभी डाल के जमीन में एकदम कल्ले फूट जाएंगे,
0: जैसे फूट जाए किसान भाई यूं देखे भाई इसकी फूट चल रही है, पेड़ों की संख्या ज्यादा हो रही है,
1: उस समय गलत है, यूरिया उस समय कभी भी ना डालें।
0: या एक आम बोलचाल की भाषा में कह दें डॉक्टर साहब की मेरी जीरी ने उसकी जीरी में तो यूरिया डाला था, मेढा ऐसा सा मार रखा,
1: नहीं वो गलत है। एक जो तरीका है जो मेढे ने करना है चार हफ्ते और छह हफ्ते तक
0: कर
1: जो डालेंगे उस समय ही करेगा, मैक्सिमम जो उसकी गाबे में आएगी वो नौ हफ्ते तक आ जाएगी और उसके बाद बहुत बढ़िया फसल
0: तो
1: होगी।
0: इसमें डॉक्टर साहब सीधी बिजाई में आखिरी पानी कितने दिन पहले बंद कर देना चाहिए?
1: बस आखिरी पानी तो जैसे आपकी ये उसमें दूध में आ जाए एक पानी लगाना उस समय, उसके बाद नहीं लगाना आपको।
0: अच्छा, जब निसरने लग
1: जाए पानी आप निसर जाए 100% नुसर जाए उस समय लगाना और उसके बाद नहीं लगाना, लेकिन मौसम को देख के भी कई बार बारिश होती है वो भी अवॉइड करना, वो भी अवॉइड करना।
0: यहाँ पे डॉक्टर साहब थोड़ा सा विरोधाभास हो जाए किसान भाइयों में और हमारे जो वैज्ञानिक पद्धति में आ जाए, जैसे मेरे दूध में आ रहे हैं तो उस टाइम ना लगा, किसान भाई चाहे कि दूध में पड़ रहे हैं जो पानी ना लाया है तो सूख जाएगा,
1: नहीं लगाना हल्का पानी,
0: हल्का पानी,
1: हल्का
0: पानी नहीं,
1: खड़ा नहीं, हल्का पानी लगाना उस समय, जरूर पतला पतला सा दे, और इसमें तो देंगे तो साथ साथ नीचे चला जाएगा, गिल्ला रखना इसमें पानी खड़ा नहीं करना, ऐसी विधि है क्योंकि इसमें 20% पानी तभी तो बचता है
0: जी जी।
1: तो इसको
0: अमूमन सीधी बिजाई में कितनी सिंचाइयाँ हो जाए किसान भाई और कितने दिन के अंतराल पर?
1: देखिए 15-16 सिंचाई सफिशेंट है इसमें,
0: इसमें
1: हाँ, और दूसरे में रुपाई वाड़ी में तो ज़्यादा लगाते हैं, वो तो चलता ही रहता है, 25 तक भी जाते हैं लोग,
0: उसमें तो गारा करना पूरा
1: पूरा खड़ा रखते हैं, इसीलिए जो 8-10 सिंचाई बचती हैं तभी 20% पानी बचता है
0: तभी
1: हाँ। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि जितनी हैवी बारिश होगी या पानी हम देंगे वो हमारी कैपिलरी ट्यूब्स खुली हैं, क्योंकि कादो जब हम करते हैं तो कैपिलरी ट्यूब बंद कर देते हैं, पानी नीचे नहीं जाता, इसमें सारा खुला होता है, नीचे चला जाता है जितने हानिकारक, इसीलिए जो जड़े हैं इसकी
0: जी
1: वो गहरी जाती हैं,
0: गहरी जाती
1: और बहुत बढ़िया पैदावार इसमें होती है।
0: दूसरा डॉक्टर साहब एक फ़ायदा शायद और किसान भाइयों को होता होगा और वो ये है कि भी कई बार फसल गिर जा जब तैयार हो रही है बाद सीमा आखिर से
1: जी।
0: तो ऐसी समस्या
1: इसमें नहीं गिरती,
0: इसमें
1: बिल्कुल नहीं गिरती, और इसमें सिंचाई का खास ध्यान रखना है
0: जी।
1: जो तरबत्तर में बिजाई कर रहे हैं हमारे किसान भाई धान की सीधी बिजाई, तो उसमें तो आप पहला जो पानी लगाएंगे 7 दिन के अंदर अंदर लगा लें थोड़ा सा, ठीक है ना
0: जी,
1: ठीक है, और फिर जो सूखे में बिजाई कर रहे हैं उसमें 4th दिन जरूर लगाएं।
0: अच्छा,
1: पहले तुरंत लगाएं फिर जाएगा, फिर तीसरे चौथे पांचवें दिन जरूर लगाएं, फिर उसके बाद आप अपने इंटरवल पे धीरे
0: धीरे धीरे
1: और खरपतवारों का जो नियंत्रण है जो ग्नोमनी गोल्ड का दूसरा स्प्रे करते हैं वो 15-20 दिन के अंदर 21 दिन के अंदर जरूर कर लें।
0: अच्छा,
1: ताकि हमारा मेन इसमें प्रॉब्लम खरपतवार है,
0: इसी समस्या
1: कोई दिक्कत नहीं है,
0: और
1: खासकर ये जो विधि है इसमें जड़ें नीचे जाती हैं, जो लो तत्व की कमी आती है इस विधि में कभी भी नहीं आती।
0: अच्छा, उसकी भी नहीं
1: आएगी फिर भी, अगर आपको लगता है रेतीली में आती है डक्कर में नहीं आएगी, फिर भी लगता है किसान को किस मैंने पिछले साल भी नहीं डाला,
0: तो
1: हाँ वो हाँ 1/2 किलो जिंक और 2.5 किलो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं।
0: और इसमें धीरे धीरे जैसे सिंचाई करें डॉक्टर साहब तो सूक्ष्म तत्व भी पूर्ण रूप में मिलते
1: पूर्ण रूप में मिलते हैं
0: और उसमें हो सके सूक्ष्म तत्व नीचे ज्यादा चले जाए।
1: हाँ जी,
0: ज्यादा पानी
1: हाँ तो उसमें प्रॉब्लम नहीं जाता, उसमें बहुत से बीमारियां हैं, इंसेक्ट्स आते हैं
0: जी,
1: ठीक है,
0: तो इसमें ऐसी समस्याएं नहीं है
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब जो जानकारी आपने दी धान की सीधी बिजाई में सावधानियों पर, तो जाहिर है हमारे किसान भाई इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको तरफ जो अपना रुझान करेंगे लगाने के लिए, जिससे कि पानी की बचत भी हो सके। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को पुनः नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का
5: पुतला बोल रहे।
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी हाँ। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
5: परम तो सभी डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच
4: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के किसान वाणी में फोन इन और फोन इन का विषय था सीधी बिजाई में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले थे डॉक्टर करमचंद, उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग रोग क्षेत्र, उनसे बातचीत करते थे वीरेंद्र भाई। इसी के लिए आज का किसान वाणी का एक समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुमन गिरदारी
0: और वीरेंद्र भाई की
3: राम राम, राम।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार, उसमें मैं आपका अपना साथी गिरधारी
1: और मैं वीरेंद्र भाई
0: और मैं दोनों कांत है। कार्यक्रम के सारे सुन रहे हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी राम राम। वीरेंद्र भाई
1: जी, गिरधारी भाई,
0: मौसम बदला है बार बार।
1: हाँ बिल्कुल, करवट बदल रहा है। आज भी उतार चढ़ाव सा रहा है मौसम में, कभी बादल हो गए कभी धूप आ गई,
0: कभी डरावा है नहीं।
1: हाँ
0: आंधी से भी जाते हैं,
1: यह भी है, खखड़ सा हो रहा
0: है ऊपर तो सारे कुछ डैग ले जाए।
1: हाँ यह भी है गिरधारी भाई, तो ही आज आपने परना भी दो बार लपेट रखा।
0: चल रहा है मौसम का, अब यूँ कहें आने वाला जो मौसम है नहीं, पाँच छह दिन का और उसका भी बेईमान वाला साहब है।
1: अच्छा यही उतार चढ़ाव रहा है,
0: यूँ ही बेईमान रहेगा।
1: और गिरधारी भाई इन दिनों में तो न्यू कही करें, अगर लू चले पूरी तप के चले
0: इबका थोड़ी सी देर हो रही है।
1: अच्छा इबका देर हो रही है, इबका एक और बात भी सुन तुम्हारी है, न्यू कही करानी है जेठ के महीने पूरी गर्मी पड़ा है,
0: दो है
1: तो डबल गर्मी पड़नी थी, इबका तो कम हो रही है,
0: वो
1: अगले जेठ में पड़ती है।
0: गर्मी चोर भी निकलेगा वो।
1: अच्छा वो भी चोर
0: निकलेगा, उस चो में पता क्या है, क्या गलती करेंगे, हम भागेंगे ठंडे कानी।
1: हाँ यह भी है,
0: ठीक है नी, वो कोल्ड ड्रिंक पर कोल्ड ड्रिंक जुट रहे हैं, ठीक है नी, अरे आइसक्रीम कानी,
1: आइसक्रीम कानी बिल्कुल,
0: ठीक है नी, तो कोल्ड ड्रिंक तो कम पीनी है, अपना सत्तू है नी
1: वो पी लो,
0: कच्ची लस्सी। हाँ लस्सी,
1: या गिरधारी भाई बिल्कुल आपने सही कहा कि सत्तू पी लें। अरे यो आज यो क्या ले रहे
0: हैं, यो पीछा ये बन नहीं पाया।
1: अच्छा
0: दिखाऊंगा आपने बड़े काम की चीज़ है, अभी
1: ना तो इस्ते मिलती जुलती सी लगा कुछ, या देखे अलग ते खास बात है,
0: डोलू में पसीना सह रहा।
1: हाँ बिल्कुल, इसमें ठंडक है कुछ, फर्क है
0: ठंडी चीज़ इसमें, जो खाएगा पता ही है, ठीक है। फिर यू करा
1: क्या बोला
0: भाई, हिंदुस्तान से लागनी।
1: अच्छा
0: ठीक है नी, और आप लोग कहते यूँ जो डोलू में।
1: अच्छा मतलब इसकी चिंता आपने पूरी हो रही है
0: जी, मैंने नहीं मिली फिर।
1: हाँ ये अभी बात है, नहीं करेंगे जरूरी इस्तेमाल,
0: इन्हें तोड़ लिमटे लिया
1: जरूर।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।
6: यह संदेश आकाशवाणी के सहयोग से पेश किया गया है। वीरेंद्र भाई
7: जी, गिरधारी भाई,
6: एक ये रागनी बोला, चिंता चिता
7: चिता, बिल्कुल सही कह रहे गिरधारी भाई, बात तो सही कह, चिंता तो करेगा ज्यादा, फिर वहीं पहुंचेगा।
6: एक संदेश था बहुत तगड़ा, तो
7: हाँ संदेश था, बिल्कुल आपने सही कहा।
6: ये संदेश हमें सुनना भी चाहिए, लेकिन एक संदेश और भी है जो मर पा है।
7: वो क्या?
6: मैं आपने सुनने चाहिए।
7: अच्छा, जरूर सुनाएंगे गिरधारी भाई। मेरे ख्याल में आपका इशारा किसान भाइयों के संदेश की तरफ।
6: बिल्कुल बिल्कुल,
7: तो क्या कह रहे हैं आज?
6: सुनो, पहला संदेश किसका है? पहला संदेश है गांव जगोड़ी से।
7: अच्छा,
6: लिखा रणजीत सिंह बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, किरत और मनराज।
7: क्या कह रहे हैं?
6: सबसे पहले तो भाई सब ने राम राम,
7: सब ने मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी
6: राम राम। अगर कह रहे हैं कि रसाला भाई ने 11 को फसल

0: दलनी से पहले मिट्टी के बारे में जानकारी थी, बहुत उपयोगी थी।
1: अच्छा, यानी मिट्टी की जांच के ऊपर जानकारी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और विनोद, वीरेंद्र, रसाला, गिरधारी, चतुरु सभी भाइयों ने अच्छा प्रोग्राम पेश किया और सब ने मार्कंत है राम राम। तो मार्कंत जितने साथी हैं ये मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम, और इन्हें संदेश लिखा है इसका वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे नियमित श्रोता हैं और हर एक प्रोग्राम की ये बड़ी बारीकी तक जो है
1: हाँ प्रतिक्रिया अपनी दें गिरधारी
0: जी।
1: भाई। और जैसा कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच के ऊपर जो है इनको रसाले भाई की जानकारी अच्छी लगी, तो प्रयास तो गिरधारी भाई यही रहा है कि समय समय पर जो है उपयोगी जानकारी समय के अनुसार जिन्हें कहते हैं ना समसामायिक विषय वो जो उठाए जा और उसके ऊपर चर्चा करी।
0: थोड़े रूस भी जाना है जो इनका संदेश
1: है
0: सामने करेंगे।
1: देखो गिरधारी भाई रूसना इनका जायज है, जब ये इतनी लगन से हमारा कार्यक्रम सुने हैं तो फिर उतना ही लगन से हमने भी जवाब देना चाहिए और इनका संदेश शामिल करना चाहिए।
0: अरे वीरेंद्र भाई हम तो पहले कहा ये संदेश को नहीं, हम तो न्यू मान का चलना
1: हमारी गिल्ले बैठे
0: सामने बैठे और बात कर लेंगे।
1: बिल्कुल
0: हम तो मानते हो संदेश है,
1: यह बात आपने सही कही गिरधारी भाई।
0: ये कुछ साथी और हमारे सामने बैठे हैं।
1: अच्छा ये कौन है?
0: ले देखो कौन कौन बैठे हैं। ये हैं भाई पहचान ले जानते हैं।
1: अच्छा
0: ये यू हैं, ये नागर तो अभी इंद्राज
1: इंद्राज
0: पार्थ कंबोज।
1: अच्छा
0: ये कह रहे हैं कि मार्कंते सब ना राम राम। 6-5 ने विनोद भाई ने प्रोग्राम टप ये नहीं मलयालिया बीच में।
1: अच्छा
0: ने
1: पपीते के बारे में जानकारी।
0: अच्छा ये 7 तारीख ने दी थी।
1: अच्छा
0: 7 तारीख ने साले भाई ने पपीते के बारे में जानकारी दी थी, 8 ने जैविक खेती के बारे में दी थी और 9 तारीख ने मेरी बात कर रहे हैं।
1: अच्छा आपने क्या कराया?
0: खेती के बारे में बताया था।
1: तो अच्छा खेती बाड़ी के बारे में बताया था। अरे विनोद भाई ने भी कह रहे हैं टपका सिंचाई विधि के ऊपर जानकारी।
0: टपका विधि होगी मेरा चश्मा थोड़ा धुंधला सा नहीं, आपका साफ है, 9 दिखे चश्मा वो।
1: हां गिरधारी भाई बदलना तो पड़ जा भी फिर भाई आगे संदेश पूरे पढ़ते हैं नहीं फिर कट जाएगा।
0: और फिर एतवार ने फिर प्रोग्राम सुना।
1: अच्छा
0: उसमें तो फिर मैं थाई संदेश मारे गीत।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहे गिरधारी भाई। उस दिन
0: कल भी सुना ने।
1: अच्छा कल भी सुना।
0: कल का भी प्रोग्राम था।
1: कल का क्या कहे
0: रसाले भाई का? उनका बहुत अच्छा लग गया। तीन देख ले 6 से लेकर 11 तक लगातार रोज के
1: एक एक दिन का याद है ना सारा खाता दे दिया।
0: इन्हीं का प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: हाँ यह भी बात। और गिरधारी भाई आज फोन भी आया था इनका।
0: तो इतना लगाव है ना प्रोग्राम था, इनके प्यार के कारण ही प्रोग्राम जो है
1: चल रहे हैं।
0: तो इन सब ने कार्यक्रम अच्छे लगे, इनका दिल से आभार। हमें उम्मीद हम भी खुशी है कि
1: भविष्य में भी इसी तरह जुड़े रहेंगे कार्यक्रम के साथ
0: और हम इनकी उम्मीदों पर खरे उतर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो संदेश आगे भी देते रहेंगे। और जो है एक संदेश और।
1: ये कहाँ से गिरधारी भाई?
0: देखिए कहाँ से है ये सुन लो, ये कुशत्रता है।
1: अच्छा ये क्या लिख रहे?
0: नाम सुन लो कौन कौन है।
1: क्या क्या नाम
0: है? फिर उस जाएंगे
1: आप
0: बनाने जाओगे नगर।
1: हाँ यह भी बात आप सही कह रहे गिरधारी भाई।
0: टिंकू ठाकुर, संगम ठाकुर, शांति, संतोष और इनके परिवार के सदस्य
1: जी क्या कह रहे हैं?
0: चतुरु भाई ने जो है, विनोद भाई ने, सब ने जो है अच्छे प्रोग्राम दिए, सब ने भाई राम राम। और आप जो भी प्रोग्राम करते हो हम दिल तक सुनते हैं और सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लग गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे प्रोग्राम आप सुनाते रहे करो और हम सुनते रहे।
1: तो गिरधारी भाई
0: आगे एक बात हो रहा है।
1: क्या लिखा है आगे?
0: अगले एक रागनी सुना दो।
1: अच्छा रागनी सुनना चाह रहे हैं? कोई विशेष रागनी लिखी है?
0: एक कह दी, एक तो सुना
1: दी। एक एक तो सुना दी और एक और आप सुनाओगे?
0: सुनाओगे
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: तो ये जितने हमारे साथी हैं टिंकू ठाकुर, संगम, शांति, संतोष, इन सब का जो हमारा ग्रंथ है वही मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी
1: राम राम, राम राम।
0: और ये धन्यवाद इनका, इन्हें संदेश लिखा।
1: इनके गिरधारी भाई पिछले हफ्ते भी मेरे ख्याल में संदेश आए थे।
0: ये भी लगातार तो निमित श्रोता अपने भी
1: निमित श्रोता
0: हर कार्यक्रम के हैं।
1: हाँ
0: तो आगे भी कार्यक्रम में ऐसे संदेश ये
1: लेते रहे।
0: अच्छा एक बात और।
1: क्या
0: ये खाया था हमने?
1: यह तो गिरधारी भाई ठंडी चीज थी, इस तरह जिस तरह आप कह रहे थे आइसक्रीम खा रखी है। पर
0: ये थी तो आइसक्रीम,
1: पर इसमें मौसमी के अनुसार रंग भी था कुछ।
0: रंग नहीं, यूं आम की थी।
1: आम का था बिल्कुल, मैं उसी का कह रहा हूँ, मौसम के फलों का रंग
0: आम था। इसमें काजू पीस रखा था, बादाम पीस रखा था, इसमें थोड़ा सा खोपा भी था, गरज जमाई थी।
1: अच्छा फिर गिरधारी भाई जो आप कह रहे थे कि भी आगे आगे

0: ये नर्स है,
1: हाँ नर्स हैं जो अस्पतालों में नर्स
0: के सेवा भाव में कमाल
1: मतलब अपनों की तो गिरदारी भाई सभी करें
0: बिल्कुल,
1: जो दूसरे रोगियों को भी सेवा भाव से अपना बना लें तो वो एक नाम आवे और वो है नर्स। और इसीलिए गिरदारी भाई पहले जो है और अब भी काफ़ी जगह है ये एक शब्द इस्तेमाल हुआ है नर्स की जगह इनको सिस्टर जी का ही रहते सारे कि बहन जैसा जो प्यार देश का है वो केवल
0: जो प्यार जो सेवा जो रख रखाव कर सके
1: जो रख रखाव
0: किसी की बस की बात नहीं, मैं कोई बार तो घर के रख जवाब दे
1: हाँ, और जबकि ये उनके पास रह गया पूरा सेवा भाव से उनको निरोगी करते हैं,
0: निरोगी इनकी निस्वार्थ समर्पण भाव को देखते हुए हर साल 12 मई को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मना है।
1: बिल्कुल हाँ अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल सही पहुंचे आप गिरदारी में, तो ही तो मैं कह रहा था ये गर्मी गुर्मी का जबका आ भी जाना घबराइयो ना बहुत सेवादार है।
0: सिस्टर हैं
1: हाँ सिस्टर हैं
0: बिल्कुल,
1: और ये भी है गिरदारी भाई इब आप कहोगे 12 महीने क्यों मनाया जाए उसकी तरफ भी एक ध्यान
0: है 13 नहीं 11 नहीं क्यों
1: तो उसके मनाने का भी एक कारण है गिरदारी भाई, और वो है वो यो है कि यो दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक माने जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाए आज उनका जन्म।
0: अच्छा,
1: जो कि सबसे पहले जो यूं माने जाए हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा समर्पित भाव से जो है सेवा करी थी रोगियों की या युद्ध के दौरान भी जो है ये आगे में रहे।
0: ठीक, तो इस और, जो बताओ जो दिवस है ना इस साल इसका थीम की है।
1: हाँ इसका थीम भी है जरूर है, हर साल बना हुआ है थीम और अब के भी है, अब की बार का थीम क्या है गिरधारी भाई, मारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं।
0: हिंदी में
1: है ये हिंदी
0: मैं चुका अंग्रेजी में
1: नहीं अंग्रेजी में भी कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं आवर नर्सिस आवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्सिस सेव लाइव्स।
0: आपने भी अंग्रेजी बड़ी सीख रखी मतलब सब बुनियाद अंग्रेजी का इसका
1: बस गिरधारी भाई थोड़ा बहुत अखबार खूर पढ़ कर जरा सा डड़ा सा पढ़ के थोड़ा
0: सा पढ़े लिखे उसको तो पढ़े लिखे
1: अच्छा
0: अच्छी एक बात है फिर
1: क्या
0: भी देखो आपने सारी बात कर ली भी भाई माँ भी सेवा कर रहा है ठीक है नहीं जीवन साथी भी सेवा करते हैं और नर्स भी
1: एक आदमी तो बहन भाई भी छोटे बड़े सेवा भाव हैं सभी लग जाए साथ
0: एक आदमी और भूल गए
1: क्या
0: जिसका आनता है जानता है बड़ी खुशी मिला है वो आधा डॉक्टर खुद ही बन जाओ
1: हाँ
0: जो मिल जाए तो
1: जो मिल जाए वो कहे जो मित्र है
0: और जो आ जाए
1: जो दोस्त है
0: जे बैठ कर रोटी खा लेगा ना उसके बाद तो कुछ नहीं
1: कई बार तो गिरधारी भाई बाट देखा कि दोस्त आओगे उसके लिए बैठ कर खाऊंगा खाना उसके लिए जिम लेंगे जो है बढ़िया अच्छा ये भी कुछ
0: ये बहुत खुश हो रहे हैं जिमीन का दोस्त आया
1: अच्छा
0: किसका आया
1: ऐसा कौन आ गया और किसका आ गया
0: भगवान कृष्ण का दोस्त आया
1: ओहो आप तो पुराने जमाने में पहुंच गए भी
0: तो सुनिए
1: फिर उनका दोस्त
0: सुनियो फिर उड़ा सुन लो
1: अच्छा ये क्या कह रहे हैं वो काफी दिनों बाद मिला होगा दिक्कत
0: बहुत मेरे को बरसों बीत गए
1: फिर तो खुशी का ठिकाना ही अलग होगा
0: देखो सुनाओ।

जब होए यार के दर्शन एकदम मन चित हो गया, परेशान भर गया दिल में उमाया। ये रखिए।

फेरपी फेट्या घड़े दे नाम आज जानू क्यों करे परगी में हो जा राजी इसका भी मन रुकमण त्यार बना।

0: वेंद्र भाई
1: जी गिरफ्तार
0: जी तो करता था और आपने सुनते रहा सुनते रहा, लेकिन रेडियो का चलना पड़ेगा, घड़ी कह रही है
1: या बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, समय का ध्यान रखना पड़ेगा।
0: तो इसके गला आज का ग्राम संसार कार्यक्रम समाप्त हुआ, कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी
1: और वीरेंद्र भाई की
0: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात।

0: कार्यक्रम है आपकी बात और स्वागत है हमारे तमाम श्रोताओं का। देखिए, जितना इंतज़ार आपको इस मंगलवार का रहता है, हमें भी रहता है कि भाई मंगलवार होगा तो प्रतिक्रियाएं आएंगी, ईमेल्स आएंगी, जिसमें आपके शिकायतें भी होंगी, सुझाव भी होंगे, आपकी प्रशंसा वाले शब्द भी होंगे। तो उन सभी के साथ जो भी आपने मेल्स हमें भेजी हैं वो लेकर इकट्ठा करके हम ले आए हैं और देखते हैं आज सबसे पहले किसकी मेल हमारे हाथ में है। तो ये मेल हमें मिली है, ईमेल हमारे पास पहुंची है रणधीर बांगड़ जी की ओर से। युगम बांगड़, विलेज जगुड़ी, गांव जगुड़ी, डिस्ट्रिक्ट है इनो का यमुनानगर, कस्बा रादौर, हरियाणा से, यानी हमारे पड़ोस के ज़िले से ही। आप कहते हैं कि स्टाफ इंचार्ज और सभी प्रस्तुतकर्ता भाई बहनों को रणधीर बांगड़ की तरफ से राम राम। शनिवार को बहन अनुराधा ने प्रोग्राम ऐसा देश है मेरा पेश किया, इतिहास की धरोहर की जानकारी दी जो बिहार से संबंधित थी, अच्छी लगी। रविवार को भी भाई प्रदीप ने प्रोग्राम हेलो एफएम पेश किया, अच्छा लगा, उस दिन सुहाना मौसम था, ध्यान से सुना। बहन प्रोमिला, ज्योतिष्मा, संध्या, आरती, शशिवाला, भाई नवीन, विपिन सहगर, पुरुषोत्तम, राजीव धीमान, सबके प्रोग्राम अच्छे लगे, सबकी का धन्यवाद। आप हैं हमारे श्रोता रणधीर बांगड़ जी, तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत। इस ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमें भेजी। और देखिए ना, जो आपका ये स्नेह है, स्नेहपूर्ण संदेश आपके इस मेल के ज़रिए जो हमें मिला, वो कार्यक्रमों के प्रति आपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम भी कहते हैं। और जानकर खुशी होती है कि आपको सभी प्रस्तुतकर्ताओं के जो कार्यक्रम हैं वो पसंद आए और आपने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना। श्रोताओं का ऐसा उत्साह और जब प्रोत्साहन ही हम सभी को और कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देता है। बहन अनुराधा जी द्वारा प्रस्तुत ऐसा देश है मेरा और प्रदीप जी का हेलो एफएम कार्यक्रम के बारे में आपके सुंदर शब्द सभी के लिए उत्साहवर्धक हैं। साथ ही आपने सभी प्रस्तुतकर्ताओं साथियों का नाम लेकर जो सम्मान दिया, उसके लिए भी हम विशेष रूप से आपके आभारी हैं। इसी प्रकार आप अपना स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन बनाए रखिए। आप और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएँ और इस ईमेल के लिए जो आपने हमें भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ईमेल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमें मिला है डेर पाटन गुजरात से हैं धीरज बीराबारी। आप कहते हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार और टेक्निकल टीम और सभी श्रोताओं को आकाशवाणी की 90 साल की प्रसारण यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय विपिन जी, विपिन प्रदीप जी, विपिन सहगल जी और ज्योतिष्मा जी और सभी अनाउंसर्स को सादर नमस्कार। हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय कार्यक्रम सुबह सवेरे, कार्यक्रम चांदनी रातें, कार्यक्रम और नमस्ते कुरुक्षेत्र फोन इन कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है। साथ ही कभी कभी हम युववाणी कार्यक्रम भी सुनते हैं। हमें सुबह का फोन इन कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और इस कार्यक्रम में श्रोताओं से बातचीत से कई विशेष जानकारी मिलती हैं। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। और आपने जो ये बात कही कि भाई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, देखिए कोई भूल चूक नहीं है और आपका जो है ईमेल वो हर हफ्ते ही इस कार्यक्रम में तकरीबन शामिल होता ही होता है और इस बार भी आया है। तो आप धीरज बीराबारी जी जो कि डेर पाटन गुजरात पतनी इतनी दूर से हमें ये संदेश ईमेल के ज़रिए भेजते हैं, उस सबके लिए सर्वप्रथम तो हम आपको कहना चाहेंगे हार्दिक धन्यवाद। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार की ओर से आपका और आपके समस्त परिवार को हम सादर नमस्कार भी भेजते हैं और धन्यवाद भी भेजते हैं कि आप इतनी दूर बैठकर भी हमारे प्रोग्राम्स को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनके लिए कुछ शब्द भी लिखकर भेजते हैं, जो कि अपने 24 घंटों में से निकालना टाइम, जबकि आज सभी अपनी दुनिया में मसरूफ़ हैं और आप ऐसे भी वक्त निकाल करके आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार के लिए वक्त निकालते हैं और अपना प्रेम भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। और आपने कहा कि आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस जो भी यात्रा है, गौरवशाली यात्रा में आप जैसे नियमित आत्मीय श्रोताओं का जो प्रेम है, जो विश्वास है, वही आकाशवाणी की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे कार्यक्रम आप सुबह सवेरे, चांदनी रातें, नमस्ते कुरुक्षेत्र या फोन इन कार्यक्रम के प्रति जो भी आपके सराहना भरे शब्द हैं, जो भी आपने व्यक्त किया है अपनी ईमेल के जरिए, उसे पढ़कर के बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, खुशी लगी, खुशी हुई और जानकर अच्छा लगता है कि हमारे कार्यक्रम आपको जानकारी, मनोरंजन और आत्मीय जुड़ाव प्रदान कर रहे हैं। और दोस्तों, बात यह है कि शब्द जब दिल से निकलते हैं तो दूरियों को भी मिटा देते हैं। कि आप गुजरात किस पश्चिमी हिंदुस्तान के पश्चिमी सिरे पर से ये संदेश यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, और रेडियो की जो मधुर तरंगे हैं हर घर को अपनेपन से सजा देती हैं, और आपका जो ये स्नेह है वो हमें उत्साह है देता है और साथ ही बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा भी देता है। कृपया आगे भी इसी प्रकार अपने सुझाव, विचार और प्रेम भेजते रहिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद देते हैं हम आपको, और अब सुनते हैं एक संदेश।
1: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और अगला ईमेल हमें मिला है कैप्टन श्यामलाल मीणा, सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। और आप कहते हैं कि आदरणीय विनेश्वरी जी, केंद्र निर्देशक आकाशवाणी कुरुक्षेत्र व प्रस्तुतकर्ता जी, नमस्कार, जय हिंद। तो आपको भी हमारी ओर से बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। और साथ ही जोशीला, जय हिंद। 5 और 6 मई का सुबह सवेरे कार्यक्रम अच्छा लगा, जो कि राजीव धीमान जी द्वारा पेश किया गया, जिसमें 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस पर अच्छी जानकारी थी। वह भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी की जयंती पर भी जानकारी अच्छी लगी। गीत लाजवाब थे। 6 मई को पंडित मोतीलाल नेहरू जी की जयंती और छत्रपति साहू जी महाराज की पुण्यतिथि पर जानकारी अच्छी लगी। गीत भी मधुर थे। 8 मई का कार्यक्रम शशि बालाजी द्वारा पेश किया गया, कार्यक्रम अच्छा लगा। और सड़क सुरक्षा व विश्व रेडक्रॉस दिवस पर जानकारी लाभदायक थी, गीत भी अच्छे। 10 मई का सुबह सवेरे कार्यक्रम में गीतों को छोड़कर बाकी कार्यक्रम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। प्रश्न 8:41 पर पूछा गया और 8:45 तक समय दिया गया, जिसमें बहुत कम श्रोता प्रश्न का जवाब दे पाए और बहुत से नाम प्रमिला जी के द्वारा पढ़े ही नहीं गए, जानकारी के नाम पर टाइम पास किया गया। वहीं आप कहते हैं कि 11 मई का सुबह सवेरे कार्यक्रम अनुराधा जी द्वारा पेश किया गया, जो बिल्कुल निम्न स्तर का कार्यक्रम था, जिसमें कुछ अश्लीलता भरे गीत भी बजाए गए। कृपया मुझे बताएं क्या ये गीत बजाना उनकी आदत है या हॉबी। जानकारी के नाम पर कार्यक्रम शून्य था। श्रोताओं के नाम पढ़ने में बहुत गलतियां भी हुई, कम नाम शामिल किए गए, सिर्फ टाइम पास किया गया। क्या कुछ प्रस्तुतकर्ताओं पर कर्णप्रिय मधुर गीत बजाने पर कोई रोक लगा दी गई है या गीत खत्म हो गए हैं। आज 12 मई का सुबह सवेरे गेशना जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, श्रोताओं के नाम बहुत रुक रुक कर पढ़े गए और कुछ गिने चुने नाम शामिल किए गए, जैसे उनको श्रोताओं के नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, जानकारी कम हो रही, तो संज्ञान लें। तो सर्वप्रथम तो हम आपका धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे आपको कैप्टन

रामलाल मीणा जी, आपने सूर्य नगरी जोधपुर से ये मेल हमें भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। और जो भी सुझाव आपने दिए हैं, आपकी प्रतिक्रिया दी हैं, उन सभी के लिए हम आभारी हैं आपके। और श्रोताओं की अपेक्षाएँ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। 11 व 12 मई के जो कार्यक्रम में यदि किसी प्रकार की कमी रही, गीत चयन में असहजता अथवा नामों के उच्चारण में जो त्रुटि हुई हो या थोड़ा धीमा पढ़ा गया हो, उसके लिए हमें खेद है। हमारा उद्देश्य सदैव स्वस्थ, ज्ञानवर्धक व मधुर प्रस्तुति देना रहता है। आपकी बातों को गंभीरता से लिया गया है तथा साथ ही भविष्य में गीतों के चयन, प्रस्तुति शैली और श्रोताओं के नाम के साथ सही जो उच्चारण है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुझाव आपके हैं कि गुणवत्ता जो है कार्यक्रमों की, उसको सुधारने के लिए ही हैं और प्रेरणा देते हैं ये हमें, कि आशा है कि आप आगे भी इसी प्रकार से हमें देंगे और अपना मार्गदर्शन। और आपने कहा कि 5 और 6 मई का सुबह सवेरे कार्यक्रम आपको पसंद आया, आपको जानकारी उसमें जो दी गई विश्व अस्थमा दिवस पर और यानी जल सिंह जी के बारे में जो जानकारी उनकी जयंती पर दी गई वो भी आपको अच्छी लगी। और 6 मई को जो प्रोग्राम था मोतीलाल नेहरू जी पर जयंती पर और छत्रपति साहू जी महाराज की पुण्यतिथि पर जानकारी दी गई वो भी आपको सराही, आपने उसको भी। और 8 मई को शशि बाला जी की प्रस्तुति की भी आपने सराहना की। वहीं 10 मई को जो कार्यक्रम रहा वो गीत तो बेशक आपको पसंद आए, लेकिन टाइम का थोड़ा आपने जो यहाँ पर दिया है इशारा किया है कि 8:41 पर प्रश्न पूछा गया, तो जी हाँ ये थोड़ा सा हो जाता है कि भी आपत्तिजनक बात है। तो जो भी प्रस्तुतकर्ता थी उस दिन पर उनको ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि वो आगे से थोड़ा सचेत रहें और जब कोई पॉइंट आउट करेंगे तभी हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना पाएंगे। जानकर तो देखिए कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन हाँ गाहे बगाहे अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो वहाँ पर अगर टिप्पणी कहीं से आ जाती है या कहीं से कुछ राह मिल सकती है और मिल जानी भी चाहिए तो उसमें कोई गुरेज नहीं। और जो आपने लिखा है उस सभी पर जो भी हमारे साथी थी उस दिन उनको ये ईमेल आपका एज इट इज़ फॉरवर्ड किया गया है कि भाई वो आगे से थोड़ा सा और ज़्यादा गौर से कार्यक्रमों को पेश करें। वैसे आपने लिखा आगे कि 11 मई का जो प्रस्तुतिकरण था वो भी आपको थोड़ा सा निम्न स्तर का लगा, तो अब हर एक जो भी रहते हैं प्रस्तुतकर्ता उनका अपना भी कुछ अपना स्टाइल रहता है प्रस्तुति का, तो ऐसा नहीं कि वो गीत जो हैं वो निम्न स्तर के या कार्यक्रम आपको निम्न स्तर का लगा। लेकिन अभी इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे कि कुछ श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो अब हर एक के अपने अपने ख्याल हैं और अपने अपने सभी के विचार भी हैं। तो किसी को कोई कार्यक्रम अच्छा लगता है और किसी को किसी का स्टाइल अच्छा लगता है, कोई प्रस्तुतकर्ता जो भी हैं उनका सभी का आपने जो नाम लिखा जो भी है तो उनको समझ में आ रही होगी अपनी बात। लेकिन हाँ जो आपने इशारा किया है वो ज़रूर इस चीज़ को सोच रहे होंगे। और साथ ही आपने लिखा कि 12 मई को नामों के जो पढ़ने में गलतियां हुई तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा इस और भी, और उनको भी इस चीज़ के लिए इंगित किया गया। और 12 मई का जो सुबह सवेरे यानी आज का जो कार्यक्रम रहा वो गेशना जी की प्रस्तुति रही, उसमें रुक रुक कर पढ़े गए तो हो सकता है कुछ आपत्ति रही होगी उनको, तो उनको भी इस चीज़ के लिए आगाह किया गया है। और आप निश्चिंत रहें, ज़रूरी है कि भाई ऐसा अगर कुछ संदेश हमें प्राप्त हो रहा है तो जो भी संबंधित हमारे प्रस्तुतकर्ता साथी रहते हैं उन तक आपकी बात ज़रूर पहुंचाई जाती है। और आपने जो ईमेल लिखा हमें, जो अपना वक्त निकाला कार्यक्रमों को सुनने के लिए और इस ईमेल को लिखने के लिए, ये सब देखिए ना कि जो भी आपका मार्गदर्शन रहता है वो केंद्र की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ही है। सुधार जो है वो उसकी प्रेरणा हमें देता है ये, और आशा है कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आपका जो स्नेह है, आपका जो वक्त है वो हमें मिलता रहेगा। और इसी के साथ हम आपको कहना चाहेंगे जय हिंद। और अगले ईमेल की ओर बढ़ें, उससे पहले सुनते हैं एक और संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और कार्यक्रम में अगला ईमेल हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से है रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल और प्रियंका। आप कहते हैं कि दूसरे और चौथे शनिवार रात 8:15 पर 9 मई को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से ऐसा देश है मेरा इस कार्यक्रम को हमने बिहार राज्य पर सुना लोक कृतियों लोकगीतों और प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और अन्य विषयों के बारे में जानकारियां सुनने को मिली। अनुराधा जी ने पूरे बिहार की सैर हमें घर बैठे करा दी। मेहनत भरे इस कार्यक्रम को तैयार करके हम श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए हम श्री महेंद्र मोहन शर्मा जी और केंद्र निदेशक विनय श्री मैडम जी और इंजीनियर श्री राजेंद्र कुमार जी का धन्यवाद करते हैं और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की पूरी टीम को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है भविष्य में भी हमें ऐसे कार्यक्रम सुनने को मिलते रहेंगे और कई कार्यक्रमों में परिवर्तन करने की सख्त जरूरत है, इस ओर अधिकारी महोदय ध्यान दें। 3-4 सप्ताह से आप हमारी बात को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आज कर लिया है हमने शामिल, आप नाराज़ ना हों। और वैसे केंद्र आपका है, नाराज़गी भी अपनी लाजमी है कि अगर नहीं हो रहा है शामिल तो हक है आपका, आप हक से बोलिए। और तो ये सबसे पहले तो हमारा आप स्वीकार कीजिए कि भाई कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा के हमारे श्रोता रवि कुमार राहुल जी और उनके सभी परिवार के सदस्य, आप सभी ने जो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रसारित हमारा जो कार्यक्रम है ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा को सुनकर जो स्नेह भेजा है, सराहना भेजी और अपना जो सुझाव दिया है बहुमूल्य, उसके लिए हृदय से आभारी हैं हम आपके। बिहार की लोक संस्कृति या लोकगीत हों और वहाँ की परंपरा हों, जो भी है वो आप तरह छोटे से कार्यक्रम में समेट कर पहुँचाने का जो छोटा सा प्रयास रहा वो सफल हुआ, ये जानकर कि बहुत ही ज़्यादा खुशी कि हमारे श्रोताओं को ये प्रयास अच्छा लगा। और आपके शब्द सभी के लिए, हम सभी के लिए प्रेरणा के टॉनिक की तरह काम करते हैं और कार्यक्रम की तैयारी में पूरी टीम ने समर्पण और मेहनत से कार्य किया तथा आपका प्रेम हमें और बेहतर और आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही आपने जो सुझाव दिया उन्हें भी हमने गंभीरता से लिया है ताकि आगामी कार्यक्रम में और अधिक जो है प्रस्तुति वो रोचक संतुलित और उपयोगी बन सके। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार की ओर से आप सभी का पुनः आभार और इस प्रकार अपना स्नेह, अपना सुझाव जो भी आप हमें भेजना चाहें उस सभी के लिए हम आपके आभारी। और साथ ही आपने लिखा कि कई कार्यक्रम में परिवर्तन करने की सख्त आवश्यकता है, तो जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो अधिकारी जो हैं वो समय समय पर कार्यक्रमों में फेरबदल करते रहते हैं, तो अगर आपने इस ओर इशारा किया है तो ज़रूर ये बात उन तक पहुंचाई जाएगी कि भाई हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो श्रोता साथी हैं, उन सभी को थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है। तो आप बेफिक्र रहिए इस बात से भी और आपके इस ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ईमेल हमें मिला है पुरुषोत्तम कुमार गांवडंडी तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर के साथी हैं। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार, 5 तारीख को आपकी बात कार्यक्रम पुरुषोत्तम जी ने प्रस्तुत किया। बचपन से लेकर आज तक रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मनोरंजन भी हो जाता है। रेडियो का यह जमाना कितना मस्त होता था, सोशल मीडिया और ना झूठी अफवाहें, रेडियो पर सयाने बुजुर्ग की तरह काम करता था। कोई भी आपको फिल्मी गीत सुनना है मोबाइल से ज़्यादा रेडियो में उसकी आवाज़ ज़बरदस्त सुनाई देती है, धन्यवाद। तो देखिए आपने पुरुषोत्तम कुमार जी की प्रस्तुति सुनी, उसको सराहा है, उस सब के लिए हम आपके आभारी हैं। 5 तारीख की ये बात है और बचपन से लेकर आप रेडियो अभी तक सुन रहे हैं तो 90 वर्ष हमारी आकाशवाणी पूरे कर रही है और ऐसे में जो आप हमारे श्रोता साथी हैं वो भी इस सभी का हिस्सा ही हैं, क्योंकि आकाशवाणी जब बोलती है तो सुनने वाले तो चाहिए ही। और आप इतनी दूर से, इतनी खूबसूरत सी जगह जम्मू कश्मीर से हमारे पास ये अपना संदेश भेज रहे हैं, तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो रेडियो से लगाव है वो जी हम बेहतर समझ सकते हैं और मनोरंजन भी आपका होता है, साथ ही साथ आपको ज्ञानवर्धन भी होता है। और बचपन से लेकर रेडियो यानी कि सयाने होने तक और अब जब आप जिस भी अवस्था में हैं, एक बुज़ुर्ग साथी की तरह आपका रेडियो ने हमेशा मार्गदर्शन किया है, तो न जाने कितने लोग हैं जो रेडियो से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आपका नाम भी उसी सब में शुमार है। तो कोई भी फिल्मी गीत सुनना चाह सुनता है और मोबाइल से ज़्यादा रेडियो में उसकी आवाज़ ज़बरदस्त सुनाई देती है।

तो जी हाँ, निश्चित तौर पर मोबाइल से ज़्यादा बेहतर जो रेडियो सेट्स होते हैं वो कहीं ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। और आपके इस ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर इंतज़ार रहेगा आपकी ईमेल का।

अगला ईमेल हमें मिला है, हमारे नियमित श्रोता हैं आप भी और आप हैं हमारे पड़ोस से, यानी कि आप हैं गांव खुखनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा, हमारे पड़ोसी ज़िले से हैं आप भी, आप लिखते हैं। और आप हैं संजीव कुमार, आपने लिखा है कि आई एम अ लिसनर ऑफ द प्रोग्राम सुबह सवेरे किसानवाणी ग्राम संसार। और आप देखिए हमेशा अपना ईमेल जो है वो इंग्लिश में भेजते हैं, तो कोई बात नहीं, पढ़े देते हैं हम। आई हैव लिसन द प्रोग्राम सुबह सवेरे, इट वाज प्रेजेंटेड बाय एंकर प्रेजेंटर मिसेस प्रोमिला सैनी। मिसेस प्रोमिला सैनी हैड प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑन 90 ईयर्स ऑफ आकाशवाणी और मदर्स डे। टुडे आई हैड सेंड करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन Ask in the program सुबह सवेरे एंकर मिसेस प्रोमिला सैनी हैड इंक्लूडेड माई मैसेज इन द प्रोग्राम थैंक्स टू द प्रेजेंटर थैंक्स टू आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने लिख भेजी है कि आपने प्रोग्राम सुना और आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। नॉट ओनली रेगुलर लिसनर, आप हमारे बहुत सारे कार्यक्रम्स को, बहुत सारे प्रोग्राम्स को सुनते हैं और उनके बारे में ज़रूर अपनी टिप्पणी ज़रूर भेजते हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ करके। साथ ही आपने जो 10 मई को यानी संडे जो था लास्ट, उसको आपने प्रोमिला सैनी जी की प्रस्तुति सुनी और उसमें आपका नाम प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद में शामिल हुआ, जानकर के अच्छा लगा। और देखिए ना, छोटी छोटी बातें कितनी खुशियां देती हैं कि हमारे जो अगर श्रोता हैं उनका नाम शामिल हो जाता है तो वो बेइंतहा खुश हो जाते हैं, और नहीं होता है तो वो उदास हो जाते हैं। आपका नाम शामिल हुआ, आपको अच्छा लगा, तो अब आपने ये बात लिखकर भेजी है तो हमें भी खुशी हो रही है। और आगे आप लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम, माई ईमेल्स विच आर जनरली रिटन इन इंग्लिश। जी हाँ, ऑलवेज यू सेंड योर फॉरवर्ड योर मेल्स ओनली इन इंग्लिश, आर रेड बाय फॉलोइंग एंकर्स प्रेजेंटर इन द रिस्पेक्टफुल मैनर विद ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, मिस्टर प्रदीप, मिसेस ज्योतिषमा, मिस्टर विपिन सहगल, नेम ऑफ द एंकर प्रोबेबली नॉट अनाउंस्ड बाय हिमसेल्फ और हूज नेम आई हैव फॉरगॉटन, थैंक्स टू ऑल द एंकर प्रेजेंटर हु हैव रेड माई ईमेल्स इन द प्रोग्राम, आपकी बात थैंक्स टू आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। जी हाँ, बहुत आप हमेशा इंग्लिश में लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जब यहाँ आते हैं तो भाई जिस भी भाषा में आप भेजें तो वो स्वीकार है आपकी भाषा। बस इतना है कहना कि हाँ, भेजते रहिए ईमेल्स, ना सिर्फ आप जैसे जो साथी हैं वो तो भेजते ही हैं, हम और भी हमारे जो लिसनर्स हैं, जो भी हमारे श्रोता साथी हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, आप लोग भी अपनी भागीदारी ज़रूर दर्ज कराया करें। और आपने हम सभी साथियों के नाम लिखे हैं तो उस सबके लिए आपको हमारी प्रस्तुति जो है वो पसंद आती है। तो देखिए ना, जब भी अगर ईमेल हमारे पास आएगी तो हम कभी भी उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे हमारी अप्रिसिएशन है उसमें, और चाहे हमारा कुछ भी आप लिख करके भेजेंगे, तो वट एवर यू विल राइट, वी इट इज़ आर ड्यूटी टू रीड दैट। अब जो भी आपने लिखा है उस सबके लिए हम आभार अपने केंद्र की तरफ से, अपने जो श्रोता साथ प्रस्तुतकर्ता साथी हैं उन सभी की तरफ से आपको धन्यवाद भेजते हैं। और आगे आप लिखते हैं कि यस्टरडे ऑन सैटरडे, ओके, मे 9th, एंकर प्रेजेंटर मिस्टर गिद्धारी हैड मेड सम रिमार्क्स अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन द प्रोग्राम ग्राम संसार। ही सेड पीपल हु सपोर्ट कास्ट सिस्टम आर एंटी सोशल एलिमेंट्स विच आई थिंक फील इज नॉट गुड। आई थिंक आई आर ऑब्जर्व्ड एवरी बिहेवियर इज रिवॉल्व अराउंड द कास्ट सिस्टम। जी हाँ, देखिए ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि हमारे जो समाज का ताना बाना है वो कुछ इस तरीके से बुना गया है कि सभी लोग उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन जो आपने डिमांड करी है वो, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो तो यही कहता है कि सभी, कानून की नज़र में या संविधान की दृष्टि में हम सभी एक समान हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कास्ट सिस्टम जो है वो सिर्फ अब

हमें लगता है कि सतही तौर पर है और ऐसा कुछ जड़ों में नहीं है कि अगेंस्ट कास्ट सिस्टम इन द फ्यूचर तो ही शुड हैव, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि उनको ये बात ज़रूर आपका जो संदेश है वो पहुंचा दिया गया है और इसमें हर एक का अपना अपना ओपिनियन है कि आपको ऐसा लगता है कि एवरी बिहेवियर इज़ रिवॉल्व अराउंड द कास्ट सिस्टम, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हम सभी के साथ में काम करते हैं और जब बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या वहाँ हम कास्ट पूछ करके काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। और जब हमें हमारा संविधान जो है वो हमें समता का अधिकार दे रहा है, इक्वलिटी अगर वो हमें दे रहा है, तो हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर के क्यों वो अपने बीच में दरारें लाएं? और साथ ही जो समाज का ताना बाना है वो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारा संविधान या कानून है वो हमें इस सब की इजाज़त नहीं देता है कि हम जाति के बारे में बात करें, और स्पेशली जब हम रेडियो पर बैठे हैं तो हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी है कि कास्ट को हम बढ़ावा दें। जी नहीं, हम सभी भारत के नागरिक हैं और सभी हिंदुस्तानी हैं, इस चीज़ के लिए हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। और आप आगे भी इस तरीके के मेल्स हमें भेजेंगे, जो भी आपके रिमार्क्स रहेंगे उन सभी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इस ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला और आखिरी ईमेल जो हमें मिला है वो है सनी शुक्ला झज्जर से। आप कहते हैं कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, मूल्यों की बात आप कर रहे हैं कि एक शब्द तो किसी आपने जो जिक्र किया है, तारीख आपने शायद नहीं लिखी, कल 7:30 को आपकी बात है कि भाई आकाशवाणी किस चीज़ की, मुझे तो सुनकर बुरा लगा, आपने बजा भी दिया। तो प्रोग्राम देखिए, जो 5:30 का प्रोग्राम रहता है वो लाइव रहता है, वो पहले से रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं रहता है। रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स जो रहते हैं उनमें तो हम काट छाँट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लाइव माइक के सामने बैठे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके लिए तो भाई नहीं रोका जा सकता उनको। और आपने जो भी लिखा कि उनको पीछे से बताया जा रहा है, तो सभी अपना प्रिपरेशन करके आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं, और जैसा भी प्रेजेंट किया जाता है कार्यक्रमों को, तो ये कोई मकसद नहीं होता किसी का कि भाई हम उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें या कुछ भी। तो आपकी ने जो बात पहुंचाई है उस पर ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा। सनी शुक्ला जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो आपने अपना मैसेज या अपना जो संदेश हमें ईमेल के ज़रिए भेजा है, तो वो जो भी कुछ है आपने जिस भी और इशारा किया है, तो उस और उनको जो भी प्रेजेंटर थे उस दिन के 7 को 5:30 के प्रोग्राम में, यानी युववाणी प्रोग्राम में, तो उनको ज़रूर इस चीज़ के लिए पूछा जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, और आपने इस ओर इशारा किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं, ऐसी हम आपसे आशा रखते हैं। और इसी सब के साथ दोस्तों हम इजाज़त लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बतलाना चाहेंगे अपना ईमेल एड्रेस, जो कि है आपकी बात akashvani@gmail.com। तो कहना इतना है कि जो भी आप महसूस करते हैं, थोड़ा शब्दों का जो चयन रहता है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, चाहे आप लिसनर हैं चाहे आप प्रेजेंटर हैं। तो सभी से इतनी सी ही दरख्वास्त की है, जब भी आप मेल भेजें तो जो भी शब्द आप लिखते हैं तो वो किसी को पर्सनल ना हो कि भाई गलत शब्दों का हम इस्तेमाल ना करें। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, इंतज़ार रहेगा अगले मंगलवार तक आपकी ईमेल्स का, जिसमें आपकी प्रशंसा भरे शब्द होंगे जो कि हमारे टॉनिक का काम करेंगे, और आपके सुझाव भी होंगे और होंगी आपकी शिकायतें भी, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं दिल खोल करके भेजिए आप, क्योंकि हम उन्हें पढ़ने के लिए मुंतज़िर हैं। और इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। दोस्तों आज आपके साथ है आपके रेडियो दोस्त ज्योतिष्मा, स्वीकार करें बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। और आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक महान कथाकार। जी हाँ, महान कथाकार जब नाम हमने ले दिया है तो आप शायद समझ गए होंगे कि आज किसकी कहानी पढ़ी जाएगी। तो आज महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक और व्यंगपूर्ण ढंग से जो लिखी गई कहानी है जिसका नाम है स्वांग, जो कि एक ऐसी कहानी जो ना केवल मनोरंजन करती है बल्कि समाज में दिखावे, अहंकार और मानव स्वभाव की सच्चाइयों को भी उजागर करती है। प्रेमचंद जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, कहानी उन्होंने एक ऐसे वातावरण में लिखी है जहाँ गांव का दृश्य है अत्यंत सजीवंत, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा सजीव तरीके से उन्होंने लिखा है, सहज है, भारतीय ग्रामीण संस्कृति से परिपूर्ण दिखाई देता है। गाँव में मेलों, उत्सवों और सामूहिक मनोरंजन की परंपरा लोगों के जीवन का एक जरूरी सा हिस्सा है। चारों ओर सादगी, अपनापन और उत्सुकता का माहौल दिखाई देता है। जब स्वांग दिखाने वाला नट गांव में आता है तो बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और युवक सभी उसके तमाशे को देखने के लिए उत्साहपूर्वक इकट्ठा हो जाते हैं। ग्रामीण जीवन की सरलता कहानी में स्पष्ट दिखाई देती है। लोग छोटी छोटी बातों में आनंद खोज लेते हैं और सामूहिक रूप से हंसते बोलते दिखाई देते हैं। गांव का वातावरण केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है बल्कि वहां सामाजिक संवेदनाएं भी मौजूद हैं। लोग कलाकार के अभिनय पर खुश होते हैं परंतु उसके जीवन के संघर्षों से अनजान रहते हैं। मिट्टी की सौंधी महक, चौपाल की चहल पहल, लोगों की सहज बातचीत और मेलों का रंगीन वातावरण कहानी को वास्तविक बना देता है। और प्रेमचंद ने ग्रामीण परिवेश को इतनी स्वाभाविकता से प्रस्तुत किया है कि पाठक स्वयं को उस गांव का हिस्सा महसूस करने लगता है।

और दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं हम प्रेमचंद की कहानी स्वामी, जिसमें नट अपने अभिनय की तैयारी बड़े मनोयोग से करता है। अलग अलग प्रकार के कपड़े, पगड़ी, नकली मूछें और अन्य सामान निकालकर विभिन्न पात्रों का रूप धारण करता है। कभी नवाब बन जाता है तो कभी साधु और कभी किसी वीर सैनिक का अभिनय करता है। उसकी तैयारी देखकर लगता है कि वह अपने काम में पूरी तरह से निपुण है। नट लोगों को आकर्षित करने के लिए ऊंची आवाज में पुकारता है, आइए हुजूर, ऐसा स्वांग दिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा। और एक ग्रामीण हंसकर कहता है, अरे भाई, तू तो सचमुच बड़े बड़े लोगों जैसा लगता है। और नट मुस्कुराकर जवाब देता है, मालिक, यही हमारा हुनर है, इसी से पेट पलता है। उसकी तैयारी में मेहनत भी दिखाई देती है और जीवन की मजबूरी भी। यही स्वांग उसके लिए रोजी रोटी का साधन है।

जी हाँ, प्रेमचंद की कहानी स्वांग, जिसमें नट अपने अभिनय और हाव भाव से भीड़ का मनोरंजन करता है, अलग अलग वेश बदल कर लोगों के सामने नए नए पात्र प्रस्तुत करता है, कभी अकड़कर नवाब बनता है तो कभी गंभीर साधु का रूप धारण करता है। उसकी आवाज़, चाल ढाल और बोलने का ढंग इतना प्रभावशाली होता है कि लोग हंसी और आश्चर्य से भर उठते हैं। बच्चे तालियां बजाते हैं और बूढ़े भी आनंद लेने लगते हैं। नट नवाब बनकर कहता है, हमारे सामने किसी की हिम्मत नहीं कि ऊंची आवाज में बोले, और यह सुनकर भीड़ ठहाके लगाने लगती है। एक आदमी हंसते हुए कहता है, वाह रे भाई, तू तो बिल्कुल असली नवाब लगता है। और नट मुस्कुरा कर झुक जाता है। उसके अभिनय में इतनी जीवंतता होती है कि कुछ समय के लिए लोग अपनी परेशानियां भूलकर सिर्फ आनंद में डूब जाते हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: लोगों को हंसाना हमारा काम है, पर हमारे दुख को कौन समझता है। और फिर वह कहता है, मंच पर हम राजा बन जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। और उसकी बातें सुनकर युवक भावुक हो जाता है। प्रेमचंद यहाँ कलाकार के जीवन की छिपी हुई वेदना को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर

कहानी में दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने समाज की वास्तविकता को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कलाकार के अभिनय और बाहरी रूप से तो लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन उसके जीवन के संघर्ष और दुख को समझने का प्रयास नहीं करते। समाज केवल मनोरंजन देखता है, कलाकार की पीड़ा नहीं। नट लोगों को हंसाने के लिए अलग अलग स्वांग करता है, परंतु उसके अपने जीवन में गरीबी, अभाव और

संघर्ष भरे हैं। और नट ऐसे में दुखी होकर कहता है, लोग हमारे अभिनय पर ताली बजाते हैं लेकिन हमारे आंसू कोई नहीं देखता। और एक व्यक्ति गंभीर होकर पूछता है, क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन है? और ऐसे में नट उत्तर देता है, साहब, पेट की आग इंसान से हर तरह का स्वांग करवा देती है। और प्रेमचंद ने इस कहानी में समाज की संवेदनहीनता और बाहरी दिखावे से प्रभावित होने वाली मानसिकता को उजागर किया है। वहीं कहानी हमें दूसरों के जीवन और संघर्षों को समझने की सीख देती है।

दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वांग में एक भावनात्मक मोड़ तब आता है जब नट अपने जीवन की सच्चाई लोगों के सामने प्रकट करता है। अब तक लोगों को हंसाने वाला वही कलाकार भीतर से टूटा हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर थकान साफ झलकती है, फिर भी एक मुस्कान लाकर अपनी पीड़ा छिपाने की वो कोशिश करता है। धीमे स्वर में कहता है कि साहब, यही दुनिया है, यहाँ आदमी को जीने के लिए कई चेहरे लगाने पड़ते हैं। और यह सुनकर लोग शांत खड़े रह जाते हैं। एक भावुक युवक वही पूछ उठता है कि क्या इंसान अपनी असली पहचान में नहीं जी सकता? और नट मुस्कुराकर उत्तर देता है, गरीबी और मजबूरी आदमी से सब कुछ करवा देती है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और प्रेमचंद ने इस प्रसंग के माध्यम से जीवन की कठोर सच्चाई और मानव की विवशता को अत्यंत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया है।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वांग के अंत में वातावरण जो है वो अत्यंत भावुक और चिंतनपूर्ण हो जाता है। नट की बातें सुनकर लोगों की हंसी शांत हो जाती है और वे उसके जीवन की सच्चाई को समझने लगते हैं। अब तक जो लोग केवल उसके अभिनय का आनंद ले रहे थे, वे पहली बार उसके भीतर छिपे दर्द को महसूस करते हैं। और वहीं नट जो है वो गंभीर स्वर में कहता है, हम लोगों को हंसाते हैं साहब ताकि अपना दुख भूल सकें। और वहीं एक व्यक्ति कहता है कि भाई आज तुमने हमारी आँखें खोल दी। और नट हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देता है, इंसान की असली जिंदगी मंच के पीछे होती है। और धीरे धीरे भीड़ वहाँ से चली जाती है, लेकिन नट की बातें सबके मन में गूंजती रहती हैं।

जी हाँ दोस्तों, कहानी जो है वो यही संदेश देती है कि जीवन केवल बाहरी आडंबर और कृत्रिम मुस्कान का नाम नहीं। अनेक लोग परिस्थितियों के कारण अपने वास्तविक भाव छिपाकर अलग अलग रूप धारण करते हैं। समाज अक्सर मनोरंजन तो देखता है, परंतु मनुष्य की आंतरिक जो स्थिति है, उसकी वेदना है और संघर्ष है, उसको नहीं समझ पाता। कहानी हमें सहानुभूति, मानवीय संवेदना और दूसरों के जीवन को गहराई से समझने की प्रेरणा देती है। साथ ही यह बताती है कि सच्चाई और आत्मीयता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। और इसी सब के साथ आज की ये कहानी समाप्त होती है। आपको आशा है हमें कि पसंद आई होगी। तो जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, आप अपना ईमेल के ज़रिए हम तक पहुँचा सकते हैं। और इसी के सब के साथ इजाज़त दीजिए आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से कुछ ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी समाचार और रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रैली की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण

0: का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जाँच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीति स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक S कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
4: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और MR अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। CBI अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। CBI ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मदन मोहन के ही संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए, चिराग फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तान।

0: ये है विविध भारती।
1: आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हरी भोली

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: जाओ कहीं भी सनम, तुझे इतनी पसंद, हमें याद रखना
1: तेरी दुनिया।
2: आज की फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से। और दोस्तों हाजिर हैं हम कार्यक्रम चांदनी रातें के साथ, और रोज़ की तरह आपके ढेरों सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हमें नज़र आ रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आप सभी ने अपनी फरमाइश में भेजे हैं। अब लाजमी सी बात है कि सभी की फरमाइश तो नहीं होगी पूरी, लेकिन हाँ नाम सभी का ले पाएं ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो आज की इस कार्यक्रम में पहला नाम जो नज़र आ रहा है वो है लाल माता सुदामा नगर अतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के श्रोता हैं। हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फुंदी भाई बागरी। अगला व्हाट्सएप संदेश हमें नज़र आ रहा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन और साथ हैं अंकुश अरोड़ा। रजाक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान और इरफान खान की फरमाइश पहुंची हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बोडाना। अगले मैसेज को हम तलक पहुंचाया है सेक्टर 67 चंडीगढ़ मोहाली से हैं टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह अमनदीप कालका से हैं शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं आप सभी रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और साथ हैं करुण वर्मा। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बेहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से फरमाइश पहुंचे तिलोक चंद वर्मा भागवत वर्मा अभिषेक सीमा अमित वर्मा मास्टर समर राज आर्यन बेबी आरोही ऐशिका अंजलि श्वेता वर्मा। और अगले व्हाट्सएप संदेश को हम तलक पहुंचाया है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत अरुणा भगत चेतन और साथ हैं सुलोचना भगत। गांव जगूड़ी जिला यमुनानगर से हैं रणधीर बांगड़ गुरमेजो गौरव परवीन युगम वीरेन और मनराज। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं आप सभी गांव लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता हैं गोविंद वैष्णव मुस्कान वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। हरदेव मीका बलदेव विर्क जयतेग विर्क और मीका विर्क का है ये मैसेज चांदनी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। जनकपुरी सहारनपुर से फरमाइश पहुंची है जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो की ओर से। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से सुनीता शिंदे प्रशांत यशराज शिंदे और ऋषि शिंदे साथ हैं कृष्णा घोड़के। शाहजी नगर देंगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से फरमाइश लिख भेजी है राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मैंडी सौरभ शर्मा सायना शर्मा और निवान शर्मा ने। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून और सुरीत रमेश ताहू। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी सोनम अदीवा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य अभियानंद आर्य और परमानंद। सारिमपुरी बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी की फरमाइश पहुंची है। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शायना हसन अक्सर नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन ने अपनी फरमाइश भेजाई है। और पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर कुशल नीति शाह सुरभि सुरभि अश्विन शाह मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी। अनारकली बाजार जगराव के श्रोता हैं सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी और उनके साथी। मजनू कटीला दिल्ली से है मधु बालूजा सागर बालूजा सतना मध्य प्रदेश से उमंग आकांक्षा और माली माही मलिक। और आप सभी ने सुनना चाहा है आशा भोसले को फिल्म है डॉन। गीतकार हैं इंदिवर और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगले गीत के लिए फरमाइशी व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है भटिंडा रोड मंडी डब्बाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लक्की और साथ हैं तानिया नारंग। अगला फरमाइशी संदेश है दंतरी की भाटापारा से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और साथ हैं नोखेलाल वर्मा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नुहाकर, निर्मला और विशाल नुहाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। अगला संदेश है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी, टोरोमाला नवा शहर पंजाब के हैं आप सभी श्रोता।

सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार और विनीत कुमार और साथ हैं सोनम वर्मा। गांव पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंचोलिया। डाबकी रोड अकोला से फरमाइश पहुंची है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार, गौरव और आरव और अर्पिता की ओर से। अगला संदेश है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी। अगला व्हाट्सएप संदेश हमें मिला है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबे राही, महराज जहां, आप सभी का ये संदेश है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। जिला मुरादाबाद, ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं फरमान सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। मजनू कटीरा दिल्ली से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग आकांक्षा और माही मलिक। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह, जोड़ा सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से हैं पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय। अगले संदेश को हम तलक पहुंचाया है आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मौरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंघेल। निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू ने अपनी फरमाइश भेजी है धनौरी तेली वाला से। फाजिल का पंजाब से है खेड़ा परिवार जिसमें शामिल है भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानसी खेड़ा, वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतिशा, संधु और मैक्स, आप सबका ये मैसेज है गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर से। गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। डेर पाटन गुजरात से धीरज बिराबारी की फरमाइश पहुंची है। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। मुल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमापुरी, पालीपुरी और सुनील पाठक। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। अगला संदेश है मुगलपुरा बागपत के श्रोता हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध और अंकित कांगड़ा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर, जसपुर उत्तराखंड की हैं आप सभी श्रोता। और आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को फिल्म है राजा जानी। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगले गीत के लिए फरमाइशी श्रोता हैं आप सभी। जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा। अगला मैसेज है गमहरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जयसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मोराहू और देवंती जयसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज, चकिया

सिंह। अगला संदेश है पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। कलानौर से है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। अगला संदेश है सल्लार पहलगाम कश्मीर से है पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमाउद्दीन, कैसरुद्दीन। अगला संदेश है हमारे पास वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की ओर से। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई और साथ ही है पूरा संघई परिवार। विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति और वैभव शिंदे मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से हैं और हिल स्टेशन खंडाला से आकाश और प्रिया सरोदे की फरमाइश पहुंची है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बाता, नीलम बाता, नितिन परक, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बाता। अगला संदेश है हमारे पास मुरादगढ़ से रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी, वंश और भुवेश कुमार काम्बोज। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म ज़बरदस्त का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। राहुल देव बर्मन का है संगीत और गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

अगले गीत के लिए हमारे पास संदेश पहुंचे हैं आप सभी के। रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया का संदेश है किशनगंज बिहार से। तहसील भादरा, हनुमानगढ़, राजस्थान, गांव है कलाना। विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और उद्योधव कड़वासरा का संदेश पहुंचा। चकला बाजार, समाना शहर, पंजाब से हैं। पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष, राजा चैतन्य, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और अगले फरमाइशी मैसेज को पहुँचाया है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन। अब ये देखिए, ये अभी शामिल किया इस मैसेज को। और मारहरा दरवाज़ा एटा से है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से है मुबीन अब्बासी। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विन और विपुल कामड़े की फरमाइश पहुंची है। तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से हैं ओम गायकवाड़, आविष्कार, प्रणीता और अनामिका गायकवाड़। अगला व्हाट्सएप संदेश है गांव फ्रांसी से हैं, हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। गांव सिली कला, जिला यमुनानगर हरियाणा से जय सिंह काम्बोज, विजयन सिंह काम्बोज, रिदम, निश्चय सिंह काम्बोज, जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरौड़ी। छोटा बाजार थानेसर से श्याम शर्मा, मिली शर्मा, चिराग राघव, तनुज, पलक शर्मा, मास्टर उदिश शर्मा। और अगले फरमाइश करता श्रोता हैं आप सभी, ये मैसेज हम पहले शामिल कर चुके हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की ख्वाहिश पहुंची है। मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र से हैं यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, राहुल, कोमल, शुभम, प्रियंका धीमान, आंचल कुंज, पर्व, प्रणी, प्रवीण धीमान, चिराग धीमान, रजत, राजेश धीमान। और अगला व्हाट्सएप संदेश है जमशेदपुर झारखंड सुपाही साहिगांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा, कुमारी रेशमा, कुमारी दीपाली, कुमारी और देवेंद्र जी। वंश ना जाने कहां से हैं ये। और आप सभी की फरमाइश पर है कार्यक्रम का अगला गीत लव स्टोरी फिल्म से लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ें, आनंद बख्शी की शब्द रचना और आर डी बर्मन का संगीत।

अज़ीज़ भाई, मतीन भाई, शेख चांद, फारुख फूल वाले, सैयद खलील मुबीन भाई, मोहम्मद यासीन मूसा करीम शेख, सलीम नेहरू पार्क, निज़ामाबाद, तेलंगाना के हैं आप सभी श्रोता। अगला व्हाट्सएप संदेश है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुता सुवर्णवानंद और सत्यवानंद का। पाकुड़ झारखंड से बोहड़ा गाची पश्चिम बंगाल से है मुन्ना और गुड्डी भगत। मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से हैं जाकिर मुरानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद मुरानी, नसीर और चाचा चाची और साथ ही है पूरा मुरानी परिवार। अगला व्हाट्सएप संदेश है खारिया जिला सिरसा से हैं प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। अगले व्हाट्सएप संदेश को हम तक पहुँचाया है करणवीर हाउस भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। अगले व्हाट्सएप संदेश के भेजने वाले श्रोता हैं मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद और प्रदीप यमेकर। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। अगले व्हाट्सएप संदेश को हम तलक पहुँचाया है लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से हैं विल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। अगला संदेश है सतवीर सिंह विजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या विजारनिया का। गांव खारिया ढाणी जिला हिरसा जिला सिरसा हरियाणा के हैं आप सभी श्रोता। श्री रामपुर भोकर महाराष्ट्र से हैं पत्रकार हरिभाव बिड़वे, अनिकेत सोनवड़े, शुभांगी श्रावण और अनीता बिड़वे। शेरवानी स्कूल गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया। और आप सभी ने सुनना चाहा है अमित कुमार और अलका याग्निक को, फिल्म है होटल, संगीत है उषा खन्ना का और गीत को लिखा है इंदिवर ने।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

और शमशुल कमर राहीगंज गुंडवारा उत्तर प्रदेश के हैं आप सभी श्रोता। सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा, हिना, गुलसिता रानी, नंदिनी और अंजलि कृष्ण की नगरी मथुरा के हैं आप सभी श्रोता। गोपालगढ़ राजस्थान से

ये वहाँ जा रही है। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म जुबैदा का गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है AR रहमान का।

और कार्यक्रम के अगले पड़ाव अंतिम पड़ाव पर हैं हम, जहां आप सुनेंगे फिल्म दाग में लता मंगेशकर को। गीतकार हैं साहिर और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा गायकवाड़, दीपांजलि और दिशा भागमारे और शशांक भागमारे। अगला मैसेज है, अब ये वो मैसेजेस हैं जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। गांव चौहलदा बागपत से हैं संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट। ये मैसेज भी पहले शामिल किया जा चुका है। और अगला संदेश है हमारे पास, देखिए आपके इतने सारे मैसेजेस और शायद आज इसी मैसेज आप सभी के नामों के साथ ही कार्यक्रम का आगाज़ हुआ था। मुंदी चक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार, सोनी कमल, किशोर शाह साह। और अगला मैसेज है फुलगांव निज़ामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद वाहिद रूमानी, मोहम्मद ज़मीर फसी, जुनैद ज़ुबैर, मुकरम नुमान फुरखान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल। अगला मैसेज है भागलपुर बिहार से हैं अश्विनी कुमार साह, अमरदीप कुमार साह, पशुपति साह और टिकू मुस्कान। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार और डैनी और साथ हैं मनीष पवार, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से। गांव खरकड़ा 24 से हैं गोलू कांगड़ा, सागर सीताराम और अंशिका बोतर, तमन्ना कांगड़ा। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म दाग में लता मंगेशकर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें, जो कि आधारित था आपके भेजे हुए व्हाट्सएप मैसेजेस पर। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब से थोड़ी देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group SOG has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The Ministry of Education today organized a high-level diplomatic interaction on Bharat Innovates 2026 in New Delhi as part of preparations for the Global Innovation Event scheduled to be held in Nice, France from 14th to 16th of June next year under the India-France Year of Innovation. The interaction brought together ambassadors, high commissioners, diplomats and government officials to discuss opportunities for global collaboration through India's growing innovation ecosystem. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In Maharashtra, six devotees were killed and around 15 others injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of district this afternoon. More than 300 devotees had gathered at the site when strong winds accompanied by heavy rain lashed the area. The injured have been admitted to hospitals in Jat and Sangli Civil Hospital for treatment. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for practical implementation of Prime Minister Modi's call. He urged citizens to reduce fuel consumption and avoid unnecessary purchase of gold. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight. Chasing a target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Earlier put into bat, Gujarat Titans posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।